नानक सुख ना सुपने है। हुनहि महला पंजवां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती उस्तत कहन न जाए मुख हो तोहारिया मोही देख दर्स नानक बलिहारिया संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा आस प्यासी सेज सो कंत बछाइए हर हां मस्तक होवे भाग तां साजन पाइए सखी काजल हार तंबोल सबे किस साजिया सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया जे घर आवे कंत तां सब किछ पाइए हर हां कंते बाज शिंगार सब बिरथा जाइए जिस घर वसिया कंत सावड भागणे तिस बनिया हब शिंगार साई सुहागणे हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराइया हरे हां जां घर आया कंत तां सब किछ पाइया आसा इती आस के आस पुराइए सतगुर भये दयाल तां पूरा पाइए मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हरे हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्त।

वह सच तना सुपने ऊ भी भई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावह संत सगल कौ दीजई जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावनी हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावनी वैदा संदा संग इकट्ठा होया औख दे आए रास विच आप खलोया जो जो ओना कर्म सुकर्म होए।

की दम के हो होती साठ रावण हुते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच न राई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांधे कमल मह पवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जाने मरत हिरत संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है।

चरण चितव मन माहि, नानक बिरही ब्रह्म के आन ना कतहु जाहि। लख घाटी ऊंचो घनो, चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी, करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम, चंदर बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों, खंड खंड कर हार। मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों, सूद ना सिमरत अंग, प्रगट भयो सब

कमने मार गलाए कै संगत कर साधकी कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ मर भी ना जानिया कोई ऐसे मरने जो मरे बहुर।

हजार हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यों ला करी केस जरे ज्यों कास

अजो सो नाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए, कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यो कांचुरी पोयांग, कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट।

कोई सांझा करे कबीर सियों हर संग बणज करे कबीर एह चेतावनी मत सह सारे जाए पाछे भोग जो

थोड़े जल माछुनी चीवर मेले ओ जाल ए टोग नैना सूट सह फिर कर समुंद संभाल कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते

ऐसनों की कुकर भली साकत की बुरी माए। ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाए। कबीर हर

शरीर बिन हर भगत ना मुक्त होए यूं कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर पाछै।

और काया हांडी काठ की ना उह चढ़ बोहोर। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन। मरने ते क्या दर्पना जब हाथ सदोहरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसिए गुण को मरिए रोए। अवगुण यारे मानस है भलो ना कह है कोय। कबीर गागर जल भरी आज काल जह है फूट। गुर जो ना चेत है अपनो अदमहा।

या कंठ में चूक है सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराय। पांचों लड़के मार के रह राम लियो लाय, कबीर ऐसा को नहीं।

सती पकारे चेहे चढ़ी, सुन हो वीर मसान। लोग सबाया चल गयो, हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो, उड़ उड़ दह दिस जाए। जो जैसी संगत मिले, सो तै सो फल खाए। कबीर जा को खोजते, पायो सोई ठोर। सोई फिर कै तू भया, जा को कहता और। कबीर मारी मरो पसंग की,

जो राम ना करे सहाय। जेह जेह डाली पग धरो सोई मुर मुर जाय। कबीर अवरह को उपदेश ते मुख में पर है रेत। रास बरानी राखते खाया घर का खेत। कबीर साधु की संगत रहो जौ की भूसी खाओ। होन हार सो होए है साकत।

आई। सर्पन हुए कह अवतरे जाए अपने खाई। कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहो ही राखे नार। गद ही हुए कह अवतरे पार सह मन चार। कबीर चतुराई अत कणी

सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाए कबीर सब जग हो फिरे मांडल कंध चढ़ाए।

जोत बिना जगदीश की जगत उलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजयो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के

रहो हर खगुन गाय। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरह कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे सरताल, चातरक ज्यों तर

रात जो नर बिसरे राम सिंह ना दिन मिले ना रात कबीर रैनायर बिशोरिया रहो रे संख मजूर देवल देवल ताहड़ी देस है उगवत सूर कबीर सूता क्या करहै

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परयो कटंब कै कांठे रह गयो राम आए परे धर्म राय के बीच है धूमा ताम कबीर साकत ते सूकर भला राखे आछा गांव ओ साकत बपरा मर गया कोई ना लह नाम कबीर कौडी कौडी जोर कै।

आर बाहर कंचन बारहा भीतर परी पंगार। कबीर रोड़ा हुए रहो बात का ताज मन का अपमान, ऐसा कोई दास हुए

होए ऊंच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराए ताते भली मधु करी संत संग गुण गाए कबीर पाटन ते उजर भला

मान मुनि मुनिवर गले मान सबह को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाह आएक लागत ही भुए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा महचूक अंधे एक ना लागई ज्यो बांस बजाइए फूक। कबीर है गै बाहन सगन घन छत्रपति की नार ताश पतंत्र ना पुजै

पाचै परी बहीर एक अवकट काटी राम की तेह चल रहे कबीर कबीर दुनिया के धोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किसका लाज सी जब

असंत मने आगर कोई अंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जान नाही कोई कह जान आपन तनी कह दास देवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल उरा गर पानी पया जाए मिले ओ ढल कूल कबीर।

के बिन मिले पलट पई सब खेहे। जह अनपौ तह पै नहीं, जह पौ तह हर नाही। कहियो कबीर बिचार कह संत।

पास चोट सहारे शब्द की पास गुरु मैं दास कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा हुए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए सेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेहे सिमरत

दिया तब हुई गो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचड़ी जा मह अमृत लोन, हीरा रोटी कारने गला कता वह कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटै मोह तन ताप, हरख सोग दाजै नहीं तब हरे आप है आप। कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार, सोई राम सबै कह सोई कौतक हार। कबीर राम राम कहो कहबे माहे बबेक, एक अनेक कह मिल गया एक समाना एक। कबीर जा कर साधना सेविय हर की सेवा नाए, ते कर मरहत सारखे भूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बान। कबीर सतगुर सूर में बाहया बान जो एक, लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत इओ मानी होए गई पाठशार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मलाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर

है जोर कर कहते है जो हलाल दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल कबीर जोर किया सो जुल्म है।

मान में पल्ला ना पकड़े कोई, कबीर धरती अर आकाश में दोए तू बरी अवध, हक दर्शन संसे परे हर चौरासी ही सिद्ध, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं।

कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोलई जिस राखै सिर जनहार। कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छडाए परापूर्व ली भावनी प्रगट होई आए। कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए। महला पंजवां कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ ताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छडाए। महला पंजवां कबीर धरती साधकी तस्कर बै सहगाए धरती भार ना व्यापई उनको लाहू लाए। महला पंजवां कबीर चावल कारनी तुख को मोहली लाए संग कुसंगी बैसते तब पूछे धर्म राय। नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे शी पोषाए लै

चितवे होए अपना चितवे आहार करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सलाहिया जे सबना सार करे महला पंजवा कबीर राम ना चेतेउ फिर आ लालच माहे।

राम नाम जानियो नहीं पालियो कटक कुटंब तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब कबीर आखी केरे माटके के

वीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग छाया रूपी साध है, जिन तजिया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाईए ठाक ना अवकट घाट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन सेती

वामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पच मुआ, चारो बेदोह माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध परम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध परम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत डोल है अंधगत, हर चीनत ना ही संत। कह नामा क्यों पाई, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड कै, करह आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे, सत पाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग। बैरागी बंधन करह ता को बड़ो अपाग। सलोक शेख फरीद के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़ है धनवरी।

किचर झत लंघाई है छप्पर टुटे मेह परिदा जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़े वसी रब हयाली है जंगल क्या टुंडे परिदा इनी निकी जंगी है फल डूंगर पवे ओम अज परिदा कूजड़ा सह कोहां थे ओम परिदा राती वड्डियां।

नाती तोती संभही सुती आए नचिंद फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी गई कथूरी गंद जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए फरीदा चिंत खटोला वान दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

चित तन बिरो ना उपजै सो तन जान मसान फरीदा ए विस गंदला तरिया खंड लिवाड़ एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़ फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम लेखा रब मगेसिया तू आहू केरे कम फरीदा दर दरवा जय जाए कै क्यों दिठो कड़ियाल एहो न दोषा मारिए हम दोषा दा क्या हाल कड़िए कड़िए मारिए।

कंध कुहाड़ा सिर कड़ा वन कै सर लोहार फरीदा हो लोड़ी सहो अपना तू लोड़ है अंगियार फरीदा इकना आटा अगला इकना ना ही लोण अगे गए संजाप सन चोटा खासी कौन पास दमामी सत सिर पेरी सडो रड जाए सुते जीरान मह किए अतिमा गड फरीदा को

सजाए तिनाहा प्रीदा कन मसल्ला सूफ गल गिलकाती गुड़वात बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात प्रीदा रत्ती रात ना निकलै जे तन चीरै कोय जो तन रत्ते रब स्यो तिन तन रात ना होय महला तीजा एहो तन सबो रात है रात बिन तन ना होय जो सह रत्ते अपने तित तन लोभ रात ना होय पै पै तन खीण होय लोभ रत विचों जाय ज्यों बैसंतर तात सुध होय त्यों हर का पौ दुरमत मैल गवाय नानक ते जन सोहने जे रत्ते हर रंग लाय फरीदा सोई सरवर ढूंढ लहो जिथों लभी वत छप्पड़ ढूंढै क्या होवै चिक्कड़ डुबै हाथ फरीदा नंडी कंत ना रावियो वड्डी थी मुयास धन कुकेंदी गोर में तै सह ना मिलियास फरीदा सिर पलिया दाड़ी पली मुछा पी पलिया रेमन गहले बावले मान है क्या रलिया फरीदा कोठे तुकण के तड़ा फिर नींदड़े निवार

मिट्टी पई अतोलवी कोए ना हो सी मेत परिदा मंडप माल ना लाए मरगस पानी चित धार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना परिदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे परांद दरवेसा नू लोड़ी है रुखा दी जीरांद फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वीस गुनही

वत कुवारी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदर पया लोक बडारण जाय गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाय चल चल गईया पंखिया जिन्नी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चलसी थके कवल अकल फरीदा इट सराने भोए सौन कीड़ा लड़े ओ मास केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी टुटी नागर लज अजराइल फरिश्ता कै कर नाथी अज फरीदा पन्नी कड़ी।

तै पासों वे लद गए तू अजय ना पतीणो हे। फरीदा मन मैदान कर टोए तिब्बे लाही अगे मूल ना आवसी दूजक संदी पाही। महला पंजवां फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे। मंदा किसनो आखिए जा तिस बिन कोई नाहे। फरीदा जे देह नाला कपया जे गल कपह चुख पवन ना इती मामले सहा ना इती दुख। चबण चलन रतन से सुनियर बह गए हेड़े मुती ताहा से जानी चल गए। फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पल्ले सब किश पाए। फरीदा पंख परौणी दुनी सुहावा बाग नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज। फरीदा रात कठूरी वंडिया सुत्या मिले ना पाऊ जिन्ना नैन निंदरावले तिन्ना मिलन को आऊ। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग ऊचे चरके देखिया तां घर करे हा अग। महला पंजवां फरीदा भूम रंगावली मांज वसूला बाग जो जन पीर निवाजिया तिना अंचना लाग। महला पंजवां फरीदा उम्र सुहावड़ी

सो सजन वीही एक टोंडेंदी नालाहा तुखां ज्यों बालीही कारण तिना मां फेरी फरीदा एहो तन भौंकना नित नित दुखी है कौन कन्नी बुझे दे रहा कित्ती वगै पौन फरीदा रब खजूरी पक्कियां माखिया नहीं बहन जो जो मंजै दिहड़ा सो उमर हाथ पवन फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया तलियां कुंडह काग अजय सो रब ना बहुड़ो देख बंदे के भाग कागा क्रंग टंडोलिया सगला खाया मास ए दोए नैना मत छूहो फिर देखन की आस कागा चूंड ना पिंजरा बसै ता उडर जाहे जित पिंजरै मेरा सहो वसै मास ना तिदू खाहे फरीदा गोर नमाणी सड करे ने करे।

चल गई फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रह सब जग तेरा होए कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर फरीदा कच्चे पांडे रखिए किचर ताई नीर फरीदा महल न सखण रह गए वासा आया तल गोरां से निमाणिया।

जाना बग बपड़ा जन्म ना भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरी जे तिस भावे नानका कागो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास इहो तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मणिया मंत कमण सो वेसो हो करी जित बासे आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैने वेस कर ता वास आवी कंत मत हुंदी होए आना ताण हुंदे होए नताना अण हुंदे आप बंडाए को ऐसा भगत सदाए।

बल बल बल बल सत बलिहार सर्ब गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीचै प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एकै सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जानै कौन तेरो पियो अलख अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्ब को तानं जन नानक भगत दार।

मन भयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसे हो तिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीवान सच सच्चे पह धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप

जग पौ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाऊ भगत एहो मन ठहरावे बलिओ चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन मह।

असव ना गज सिंघासन छिन मह त्यागत नांग सदारु सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारु।

ज्ञान हे भगवंत कृपा करता रहू प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सहन मीत सुत पाई।

औध तन जारी कर्म धर्म संयम सोच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत

प्रेम रस भगती हर जन ताकै दर्श समावत तिसह त्याग आन कौ जाचह मुख दंत रसन सगल घस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझह समझावत माया रंग बरंग करत भ्रम मोह कै कूप गुबार परियो है एता गब आकाश ना मावत बिस्ता अस्त क्रिम उदर भरियो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर धन शीन अज्ञान हरियो है जोबन बीत जरा रोग ग्रसियो जम दूतन दन मृत मरियो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरियो है प्रेम भगत पुदर है से नानक कर कृपा संत आप करियो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रवतारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग पावक जरियो ना जात रहियो जन धूर लग नीर ना साकस बोर चल है हर पंथ पग।

विचरहै अनक शास्त्र बहु खटुआ, पसम लगाए तीर्थ बहु प्रमते, सूखम देह बंद है बहु जटुआ, बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ, पूजा चक्र करत सोम पाका, अनक पांत

दुर्त निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल

साध सदाधिक मुन जन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आदि जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावह जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावै सर्वात्म जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह गुण बरन चार खत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावह गुण शेष सहस जिह बारस आद अंत लिव लाग तुना गावै गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बसियो निरवैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियत भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब जन कल बखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै माणियो सत जुग तै माणियो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौ राज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल।

सोई पुरख धन करता कारण करतार करण समर्थु सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथु ता धरियो मस्तक हथ सहज अमियो बुठो सज सुर नर गण मुन बोहे आगाज मारियो कंटक काल गर्ज धावत लियो बरज पंच भूत एक घर राख ली समझ जग जीतो गुरुद्वार खिल है समत सार रत उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीर्त कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगतर गुर परस मुरार जा की दृष्ट अमृत धार काल पखन उतार तिमर अज्ञान जाहि दर्श द्वार वे जो सेवह शब्द सार गाखड़ी बिखमकार ते नर भाव उतार किए निरपार सत

सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर समरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बनासन लोभ मोह वस करन सरन जाचक प्रतपालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सतगुरु काल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फिर

नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै हठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के

सारी जिन भगत भवजन तारी सिमरहो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थपियो जीन सर्व सिद्धि काव जन कल सुबुद्धि कीर्त जन

जती तपीसर मन वसया सोई नाम सिमर गंगेव पतामह चरण चित अमृत रसया चित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया नाम कित संसार किरन रव सुरतर साख है उत्तर दक्षण पूब देश पश्चिम जस भाख है जन्म ता एहो सकियत जित नाम हर हृदय निवास है सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशास है भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत भवजन हरन गुरे अमरदास तै पायो नाम त्यावह देव ततीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मांड तारी जह नाम समाधि।

अमर गुर तुस दियो करतार। सत सूरो सीर बलवंत सत पहाए, संगत सघन गुरु मत निर्वैर लीना। जिस धीरज धुर धवल तुजा।

नाम रस खान हर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सतगुर सेवियो जिस पसाए गत अगम जानी कुल संभू समुद्धरे पायो नाम निवास सके अठ जन्म कल उचरै गुर परसेउ अमर प्रगास बारज कर दाहिणै सिद्ध सनमुख।

अमर गुर इत रंग रातौ मस्तक निशान सच्चौ कर्म काल जोड़ कर त्यायु परसे हो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायु चरण ता पर सके अत चरण गुर अमल पवल रै।

गुर अमर पणिज नैन ता पर सके अथ नैन गुर अमर पखिज श्रवण ता पर सके अथ श्रवण गुर अमर सुनिज सक्याथ सो ही ओ जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सक्याथ सो सिर

लख है एक एक कर वरनियो गुरु अमरदास जालप भणे तू एक लोड़ है एक मन्यो जे मत गही जय देव जे मत नामे सम्मानी जे मत त्रिलोचन चित भगत कंबीर है जानी रुक मांगद करतूत राम जंप हो नित भाई अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजे सो मत जल जानी जुगत गुरु अमरदास।

गुरु अमरदास परसीय सिद्ध साधक असासह। गुरु अमरदास परसीय ध्यान लहिया पौ मुकह। गुरु अमरदास परसीय अपौ लभै गौ चुकह। एक बिन

सो दृढ़ नानक संग रहियो ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहियो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवण बखाणो जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो बोहिथो विधातै निर्मयो सब संगत कुल अधरन गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन आप नारायण कला तार जग मह परवरियो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो जेहे सिख है संग्रहियो तत हर चरण मलायो नानक कुल निम्मल अवतरियो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिख है सरन पर है ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख है भगत भाई भरपूर हृदय उचरै करतार है गुर गौहर दरियाऊ पलक डबंत्य है तार नानक कुल निम्मल अवतरियु गुण करतार उचरै गुरु अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरि।

है शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहू पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै देश हुक्म।

सहज रंग दर्शन दियो, रहियो संत हौ टोल, साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी तपस्य है, मुखों ए पंडित मिठे, वर्ष एक हौ फिरियो, किने नहो पर क्यों लायो, कहते हैं कहती सुनी, रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगी,

सनाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनक कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तै निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिखण।

इव जुद्ध कार कन हर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब

निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सद गावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जनह की आसा सतगुर सेव परम पद पायो अवनासी अवगत ते आयो तिस भेटे दारिद्र ना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन केरे अमह नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपार परे छुटत परवाह अमह अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवह संत करह मन मज्जन

कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करह लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सर अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भव भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत बिचारियो सदा चाहे हर पाई प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माणे नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरे तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै दुरत दूर अंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटै संजम सत संतोख सील सनाहुम फुटै सतगुर प्रमाण बिदनै सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरै तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नवनिध नाम निदान रिद सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लागत।

भवियो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चरे कै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भये सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उच्चरै।

पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूथ समाणी अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक।

रस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै त्यो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बण आवै।

खिन मातर जा कौ दृष्ट तारै शब्द रिद बीचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान बिख्याता अहन सत्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दरिद्र जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म कर्म पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै।

कार अकथ कथनहार तुझ बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्या

बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर कमन उपमा देओ कमन सेवा सरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच क्रम जान अनक

पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कवल जास सब विद मान्यो मन तब ही भयो परसन राज जोग तखत दीयन गुर रामदास रड जिसह धार्यो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सास रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुंदर के धार्यो त्रि भवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण है सुनियो बिख ते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारे पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो बीचारे काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए

गुर कर सच बीचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपुन, अगन कट है सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कह, जिन गुरु ना देखो न हो कियो, ते अकियत संसार मह, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारन तरन समरथ कल युग, सुनत समाद शब्द जिस केरे, हुन दुखन नास सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान।

मेरे जौहर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो पुती जो प्यास पियूस पिवन की बंचत सिद्ध कहो भिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहं दिस तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरयो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पान दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया

शब्द हर हर जपै नाम नव निध अपै रसन एहन सरसै सत कर जानी ओह हुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुख है त्याईऐ अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओह बचन गुर रिध धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानी ओह ज्यों ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाईऐ हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईऐ अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईऐ नाम निर्वाण निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेवा शिव सिद्ध साधक सुर असुर गण तरह ततीस गुर बचन सुन कान रे हुन तरह ते संत हित भगत गुर गुर करह तरहो प्रहलाद गुर मिलत मुन जान रे तरह नारदाद सनकाद हर गुरमुख है तरह एक नाम लग तजहो रस अन रे दास बेनत कह नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहिब सब ऊपर करी कृपा सतयुग जिन ध्रू पर श्री प्रहलाद भगत उधरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लख्या ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारहो मानस जन्म दे निस्तारहो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसै बनवारी तिन लहणा थाप जोत जग तारी लहण पंथ धर्म का किया अमरदास भले कौ दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निध अप्यो अप्यो हर नाम अखै निध चौहो जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंद है जो चरण सरण सुख पावे है परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरण सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरन जेह अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बेचित चाओ आनंद नित मंगल गुरदर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुरदर्शन परसन परम पवित्र गति जीता है जम लोक पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश
तिलक सुंदर दशरथ कार मुन बंछ जाकी सरनंग सतगुर गुर सेव अलख गत जा।

जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन कौ पदवी उच भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन करन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ है सुनह गाव है प्रभाते है करह स्नान स्नान करह प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करन कंचन तन होए परस पारस कहो जोत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्ण सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन जिन्हों बात निश्चल ध्रू जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुदर खिन इक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन

परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सर्वर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख तरियो हरनाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद

काल मुकट शीस मोर पंख चाहे दियो, देव जीर बड़े तीर धर्म अंग अलाके अगम, खेल किया अपने उशाहे दियो, अकथ कथा कथी ना जाए, तीन लोक रहे आसमाए, सुतह सिद्ध रूप धरयो, साहन कै साहे जियो, सत साच श्री निवास आदि।

निदान सच जान मंत्र एह निसबासर हुए कल्याण लह परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों छाड़ तोह हम मैं का फंद काट।

सब रचना अगम अनंत अनाद आद जिस कोए ना जाने सेव ब्रंच तर ध्यान नित है जिस बेद बखाने।

करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ हुन ध्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहित।

मतरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर

कर देखो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जा को मन ध्यान धरे फिरत सगल जुग कबहु का को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मुन गह नात जात कबलास को जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुरु सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंज तिहों लोग परगासे देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख परहर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभित अल समूह ज्यो कुसुम सुबासे विदह मान गुर आप थप्यो थिर।

धरियो गुर हाथ। तीन भवन भरपूर रहियो सोई, आपन सरस कियो ना जगत कोई। आपने आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर, गण गंधर्व खोजंत फिरे। अविनाशी अचल अजूनी संभो,

आस जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा उब भगत हर के जो गण अम्बरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीर भणंग तिनको अवतार भयो कल भिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिनंग बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिनंग कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो जेहे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खिन जेहे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जेहे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जेहे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावै सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करहो जेह सतगुर लग प्रभ पाई सो सतगुर सिमरहो नरहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारू दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमर

देखत अत हुए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जानियो, तीनी भगत प्रेम लिवलाई। तांते अंगद अंग संग भयो शायर, तिन शब्द सुरत की नीम रखाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जी

सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल पण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगम नि

नमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो काल जोड़ कर सुजस वखाणियो भगत जोग कौ जैतवार हर जन के उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो बडभागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दिरड़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन घर गुर रामदास अनभव ठहरायो जनक राज बरताया सत जुग आलीना गुर शब्दे मन मानिया अपतीज पतीना गुर नानक सच नीम साज सत गुर संग लीना गुर अर्जन घर गुर रामदास अपरंपर बीना खेल गूड़ो कियो हर राय संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो अजोनी संभवियो सुजस कल कवियन बखाणियो गुर नानक अंगद वरियो गुर अंगद अमर निदान गुर रामदास अर्जुन वरियो पारस परस परमान सद जीवन अर्जन अमोल आजुनी संभव कह भंजन पर दुख निवार अपार अनंपो अगह गहन भ्रम भ्रांत दहन शीतल सुख दातो असंभवो उदवियो पुरख पूर्ण बेदातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पार

पायो बड भागी लिव लागी मेदन पर सहता तै भंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बक्ता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख बसारन शब्द सार हर सम उधार अहमेव निवारन महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नव निद नान खुटै गुर रामदास तन सर्ब मैं सहज चंदुआ ताण्यो गुर अर्जन कल उचरै तै राज जोग रस जान्यो पै निरपहु माण्यो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर

लिखियो अक्षर मस्तक तुर परगट ज्योत जगमग तेज भू मंडल छायु पारस परस परस परस गुर गुरु कहायु पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कल युग जहाज अर्जन गुरु।

अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसह संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्म

खहर अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे नित पुराण बाची है वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संचरयो सो कवन कह श्री गुरमुयो देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपह असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपह काटे सो पाप तिन नरों के गुर राम।

किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण अपार पहला वस

पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ झखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए बेड़े डुबण नाहीं पौ नानक दुनिया कैसी होई।

परे गुर सरवर सच्ची पाल अग्न मरे जल लोड़ लहो विण गुर निद जल नाही जन्म मरे परमाई है जे लख कर्म कमाहे जम जागात ना लगई जे चले सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेले मेलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नाए मन तन मैला अवगुणी चिंज भरी गंदी आए सरवर हंस ना जानिया काग कुपंखी संग साकत स्यों ऐसी प्रीत है बूझो हो ज्ञानी रंग संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नावन नानका गुर तीरथ दरियाओ जन्मे का फल क्या गणी जहां हर

कबला कबला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहां जैसे ती मेरा संग।

वह सदा सदा सुरती ही पत होए, सर्फ है सर्फ है सदा सदा एव गई विहाय। नानक किसनो आखिया बिन पुछिया ही ले जाए, दोष ना दे राय नो मत चले जा बुढ़ा होए। गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पवना खाती तोए, पूरे का किया सब किश पूरा घट वद किश नाही। नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे माहे समाही।

ठग मनमुख बन चलाई है ना मिलही वग सग आप भुलाए भुलिया आपे मेल मलाए नानक गुरमुख छुटिया जे चले सतगुर पाई साला ही सालाहना ही सच्चा सालाही।

गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाय से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाय नानक होर पातशाहियां कूड़ियां नाम रते पातशाह ज्यों पुरख है कर भगती नार है अत लोचै भगती पाए बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामै चित लाए मन तन धन आगै राखिया सिर वेचिया गुर आगै जाए तै भगती भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ भी परवाह है कित खादै तिपताए सतगुर कै पाणै जो चलै तिपतासै हर गुण गाए तन तन कल युग नानका जे चले सतगुर पाए सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उर धार तिग तिन्ना का जीविया कित आए संसार गुरमती भउ मन पवै ता हर रस लगै प्यार नाउ मिलै तुर लिखिया।

मनमुख अंदाल हुए ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागे सोए नाम रतन परगासिया मन तन निर्मल हो।

है जि है मन चढ़िया दसवें आकाश किथे ऊग ना भुख है हर अमृत नाम सुख वास नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम परगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए

आई। मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई, कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए ना पाई। पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई, बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे भाए खुआई। जोबन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाई, पुत कलात मोह हेत है अंत बेली को ना सखाई। सतगुर सेवे सो सुख पाई नाओ वसै मन आई, नानक से वड्डे वडभागी जे गुरमुख नाम समाई। मनमुख नाम ना चेतनी बिन

अंदर शुद्ध नहीं। गुर बचन ना करहे विसास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है। नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की राखदा। हौ सद बलिहारी तास, गुरमुख जो हर सेम दे। जन नानक ता का दास, माया पोयंगम सर्प है। जग घेरिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है। गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिन को पूर्व लिखिया। तिन सतगुर मिलिया आए, मिल सतगुर निर्मल होया। बिख हऊ मैं गया बिलाए, गुरमुखा के मुख उजले। हर दरगाह सुबा पाए, जन नानक सदा कुर्बान। तिन जो चल है सतगुर पाए, सतगुर पुरख निर्वैर है। नित हिरदय हर लिव लाए।

हर गुरमुख कृपा तारियन जन बिछड़े आप मलाय जन नानक तिस बलिहार ने जो सतगुर लागे पाए नाम लगे से उबरे बिन नामे जमपुर जाहे नानक बिन नामे सुख नहीं आए गए पछताहे चिंता तावत रह गए ता मन भया आनंद गुर प्रसादी बुझी है सा तन सुती निचिंद जिनको पूर्व लिखिया तिन्ना भेटिया गुर गोविंद नानक सह

बिन हर शांत न आवई किस आगे करी पुकार। वडभागी सतगुर पाया बूझिया ब्रह्म विचार। तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर पुर तार। असी खते बहुत कमाव दे अंत न पारावार। हर कृपा कर।

जन सिज्जे बिन शब्द मुक्त ना होई, भेख करह बहु कर्म बगुत्ते पाए दूजे परज विगोई। नानक बिन सतगुर नाउ ना पाईए, जे सौ लोचै कोई हर का नाउ अत वड ऊंचा, ऊंची हूं ऊंचा होई। अपड़ कोई ना सकई जे सौ लोचै कोई, मुख संयम हच्छा ना होवे कर भेख भवे सब कोई। गुर की पौड़ी जाए चढ़े कर्म प्राप्त होई, अंतर आए वसै गुर शब्द विचारे कोई। नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोई, माया मोह दुख सागर है बिख दुतर।

आई। नानक करता सब किस जानदा, जिन रखी बणत बनाई। होम जग सब तीर्था, पढ़ पंडित थके पुराण। विख माया मोह ना मिटई, विच हूं मैं आवन जान। सतगुर मिले मल उत्तरी, हर जप

बहु चित्तवधि बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्तर ना थी मर बिन सजाई खिनवार।

भी का विसाहो ना कीजै, जे का पार वसाए, अंतकाल तिथे तो है, जिथे हाथ ना पाए, मन मुख सेती संग करे, मुहे कालख दाग लगाए, मुह काले तिन लोभियां, जासन जन्म गवाए, सत संगत हर मेल प्रभ, हर नाम बसै मन आए, जन्म मरण

जियो पिंड सब ते सदा प्रतपाल करे हर राय। चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हाथ ना कथाऊ पाए। बाहर पखंड सब कर्म करह मन हिरदय कपट कर।

करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार नानक आप ओहे उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस त्रापे हर दरगह गुर शब्द सिंघापे बिन शब्द मुआ है सब कोई मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम ना चेत है अंत दुख रोए।

सदा सदा हर गुण रवह, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रह। दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान। मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही। विच हम मैं कर्म कमाव दे, सब तर

गई। जे चलन सतगुर पाए मन मुख झूठ ना उतरै, जे सौ धोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन, गुर कै अंक समाए बुरा करे सो केहा सिज्जै, अपने रोहे आपे ही दज्जै, मनमुख कमला रगड़ै लुज्जै, गुरमुख होए इस सब किस सुज्जै।

सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किल विख पाप सब कटी है हम मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानिए भाई जां सतगुर की कार कमाए तन मन सौंपे जी सौ भाई लए हुक्म फराऊ जह बसावह बैसह भाई जह भेजह तह जाऊ एवड़ धन होर को नहीं भाई।

बूंद पवै सहज सुभाए, जल ही ते सब उपजै, बिन जल प्यास ना जाए। नानक हर जल जिन पिया, तिस भूख ना लागै आए। बाबी हा तू सहज बोल, सच्चै शब्द सुभाए।

आस सतगुर मिलिया जल पाईऐ चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसकै पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर गुठा मन तन सब परफड़ै सब जग हरियावल होए शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरै जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोए हर उठै मन तन परफड़ै सब जग हरिया होए वडड़ै चाल चाल चलंबलै

हो क्यों सज्जन मिलह प्यारिया औंट नेंदी तिन सज्जन सच सुहारिया सतगुर मैं डा मित है जे मिले ता एहो मन वारिया।

कर नानक ले हो मलाए मैं जाचक दीजै नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै।

आए मानमुख हुकुम ना बुझे बपड़ी नित हों मैं कर्म कमाए वर्त नेम सोच संयम पूजा पाखंड भरम ना जाए अंतरोह कुशुद्ध माया मोहे बेदे ज्यों हस्ती शार उड़ाए जिन उपाय तिसे ना चेत है बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करत है पूर्व लिखिया कमाए गुरमुख प्रतीत पई मन मानिया

कूड करे आहार भिख माया धन संच मरह अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संजम करह अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसिया मन आए राग नाथ।

जम्मन मरन ना चुकई हौ मैं कर्म कमाए गुर सरनाई उबरे नानक लय छाए सतगुर पुरख हर त्याईंदा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एहो पौजल।

पार लंघाए गुर सिखा की हर धूड़ देह हम पापी पी गत पाहे तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया गुर नानक मिलिया आए जम कंकर मार बदारियन

जागन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे अपार जिस है उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार।

नानक हर बिसराए कै पौंदे नरक अंधियार माया मनो ना विसरे मांगे दम्मा दम सो

फिर छां दैशाहो जिस पास बैठे सोई है सबना दावे सा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन कहो नानक हर पज मना जेह बिद जल कौ मीन बिखियन स्यों काहे रचियो निमुख ना होए उदास कहो नानक पज हर मना परे ना जम की फास तरन आपो यों ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक पज हर मना औद जात है बीत बिरद पयो सूजै नहीं काल

नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान। हर जन हर

कहो नानक हर भज माना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरयो मिटयो ना जम को त्रास कहो नानक हर

भाई चितवत रहे उठ गौर, नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोए कहो नानक सुनरे मना हर पावे सो होए।

नानक नेह फल जात ते ज्यों कुंचर इशनान सिर कंपयो पग डग मगे नैन जोत ते हीन कहो नानक एह बिद पई।

असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख

असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वढ़त्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक।

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक ओवेश उगत ज्ञान दया भंडारण घड़कड़ वाजहे नाद आप नाथ नाती सब जाकी रिद

इनका पौ सब गवासी, जिन सेवा मेरा हर जी, ते हर का रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेंत बेंता, तेरे भगत सलाहंतु जी, हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करे घर पूजा जी, तब ताप है जपे बेंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरत साहत जी, कर क्रिया खड़ कर्म करंता, से भगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे घर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी, तो जेवड़ अवर

नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते तमन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसड़िया जो होवे सह सो मेल।

सहस्ताव नयन नान नयन है तोय कौ सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बेमल नान एक पद गंध बिन सहस्ताव गंध एव चलत मोही सामय।

गए बसन सुहेला औद कटै दिन सरहणारे मन गुरमिल का सुवारे रहाओ इव संसार विकार संसेम है तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे इव रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हो हर गुरते मने बसेरा निज कर मैल पाओ सुख सहजे बौर न होएगो पेरा अंतर जामी पुरख बेदाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे।

मद देख फूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पावन पीण अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सावन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

रस सोयना रस रूपा कामण रस परमल की वास रस घोड़े रस से जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कै कड़ नाम निवास जित बोलिया पद पाई है तो बोलिया प्रवान फिक्का बोल विगुचना

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर मैं खेल खिलाए, संजोगी मिल एक से वियोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणजिया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी

पुते ना पवे तिन हर गुर दर्श ना होए खोटे जात ना पात गए खोड ना सीज सकोए खोटे खोड कमावना आए गया पद खोए नानक मन समझाई है गुर के शब्द सालाहा राम नाम रंग रतिया पार ना परम तिनाहा हर जप लहा अगला निरपो हर मन माहा त्री राग मखला पहला कर दूजा तन जोबन अर फुलड़ा नाठी एड़े दिन चार पबन घेरे पज्यो टाल टुल जुमन हार रंग मान ले प्यारिया जा जोबन नौ हुला दिन थोड़े थके।

की बाणी यो मन रत्ता माया खसम की नदर दिले पसंदे जिनी कर एक त्याया ई का रखे पंज कर साथी नाओ शैतान मत कट जाई नानक आख राहे पै चलना माल तन कितकू संजया ही श्री राग महला पहला कर चौथा सोई मौला जन

दूर आपे ही आपे मंज म्यानो आपे वेख सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जोत पावे नानक हुक्म सोई परवानो। श्री राग महला पहला कर चौथा कीता कहां करे मनमान देमन हारे कै हथ दान पावे दे न देई सोए कीते कै कह क्या होए आपे सच पावे तिस।

कर परमाइये मन हिरदे कपट कमाए हर का महल न पावई मर रिश्ता माए समाए मन रे ग्रह ही माए उदास सर संजम करनी सो करे गुरम खोए प्रगास हराव गुर के शब्द मन जीत।

अमृत सच्चा नाम है, तैना कछु न जाए, पीवत हू परवान पया, पूरे शब्द समाए, आपे देता पाई है, होर करना किशु न

अंतर तेरे हर बसे, पुर सेवा सो पाए, अरहाओ सच बाणी सच शब्द है, जहां सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे, हम में क्रोध निवार, मन निर्मल नाम त्याई है, ता पाए मोख द्वार, हम में विच जग बिरसदा, मर जम्मे आवे जाए, मन मु शब्द ना जाननी, जसन पद गवाए, गुर सेवा नाओ पाई है, सच्चे रहे सुमाए, शब्द मने गुर पाई है, विचों आप गवाए, अनदन पगत करे सदा, साचे की लिवलाए, नाम पदार्थ मन वसया, नानक सह सुमाए, श्री राग मोहल्ला तीजा, जिन्नी पुरखी सदगुर ना सेवयो, से दुखिए जुग चार, कर हुंदा पुरख ना पछाणिया, अभिमान मुठे अहंकार, सदगुरु क्या फिटकया, मंग थके संसार, सच्चा शब्द ना सेवयो, अब काज सवारण हार, मन मेरे सदा हर वेख हदूर, जन्म मरण दुख पर हर, शब्द रहया परपूर, अरहाओ सच सलहान से सच्चे।

केस हो सेवी क्या जब करी सतगुर पूछो जाए सतगुर का पाणा मन लई विचों आप गवाए एहा सेवा चाकरी नाम से मन आए नामे ही ते सुख पाई है सच्चे शब्द सुहाय मन मेरे अनदिन जाग हर चेत अपनी खेती रख ले ऊंज पड़ेगी खेत हरहाओ मन की इच्छा पूरियां शब्द रहा भरपूर पए पाए भगत करे दिन राती हरजू वेखे सदा हदूर सच्चे शब्द सदा मन राता भ्रम गया शरीरों दूर निर्मल साहिब पाया साचा गुणी धीर जो जागे से उबरे सूते गए मुहाए सच्चा शब्द ना पछाण्यो सुपना गया विहाय सुन्ये कर का पौना ज्यो आया त्यों जाए मानव जन्म बिरता गया क्या मोदे सी जाए सब कुछ आपे आप है होमे विच कहन ना जाए गुर के शब्द पछाणिए दुख होमे विचों गवाए सतगुर से मन अपना हों तिनके लागो पाए नानक दर सच्चे सच्यार है।

खेती जम्मी अगली मनुआ रज्जा सह सुभाय। गुर का शब्द अमृत है जिद पीते तिख जाए। यो मन साचा सच रता सच्चे रहया सुमाए। आखण वेखण बोलना शब्दे रहया सुमाए। बाणी वज्जी चौजुगी सचो सच सुनाए। होमे मेरा रह गया सच्चे लया मिलाए। इनको मैल हदूर है जो सच रखे लिवलाए। नदरी नाम ते आईये विण कर्मा पाया ना जाए। पूरे भाग सत संगत लहे सगुर पेटे जिसे आए। अनदिन नामे रत्या दुख बिखिया बिच हो जाए। नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम सुमाए। श्री राग महला तीजा अपना पाओ तिन पायोन जिन गुर का शब्द विचार। सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार। दुबदा मैल चुकाइन हर राख्या उर तार। सच्ची बाणी सचमान सच्चे नाल प्यार। मन मेरे होमे मैल पर नाल हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारन हार। हरहाओ सच्चे शब्द मन मोया प्रव्यापे लय मिलाए। अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत सुमाए। ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सदगुर बूझ न पाए। जिनको पूर्व लिखया सदगुर भेटिया तिने आए। विण नावे सब डूमणी दूजे पाए खुवाए। तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विखाए। परम पुलाना अंधला फिर आवे जाए। नदर करे प्रवे अपनी आपे लए मिलाए। सबके सुनदा वेखदा क्यों मुकर पे आ जाए। पापो पाप कमाऊं दे पापे पजे पचाए। तो प्रवनदर न आवई मन मुख बूझ न पाए। जिस वेखा ले सो ही वेख नानक गुरमुख पाए। श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग न टुटई होमे पीड़ न जाए। गुर प्रसादी मन

सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना विछड़ है, नानक गुरमुख होए। श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे, सिरट देखे आप उपाय, तब एको एक वर्तदा अलख न लिखया जाए। आपे प्रभु दयाल है, आपे दे बुझाए, गुरमति सद मन वसया, सच रखे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन ले जाए, मन तन शीतल सब थीए, नाम से मन आए, हरहाओ जिन कर कारण तारिया, सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणिए, जां आपे नदर करे, छे जन सब दे सोने, ते सच्चे दरबार, गुरमुख सच्चे शब्द रते, आव मेले करतार, गुरमती सच सलाना, जेदा अंत न पार आवार, धड़कड़ आपे हुमस, हुक्मे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है, हौमे विचों कोय, सातल नावे बारी, अवगुणवंती रोय, सच सलागी सच

पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिन्नी मेरा प्रत्याय नानक तिन कुर्बान, श्री राग मोहल्ला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक स्यों लिवलाए। मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखे आपाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाए। मेरे मन गुर सब

विचार या थोड़ी बात गुमान रहाओ जैसे रैन प्रौने उड़चल से प्रभात क्या तू वृत्ता ग्रस्त स्यो सब फुल्ला की बागात मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रलोड़ सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़ लख चौरासी परमतया दुलाभ जन्म पायो ए नारक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए श्री राग महला पंजवा पिचर वसे सोहेलड़ी

पौ संत सरणी लाग चरणी, मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे एक करनी सार। आव छोड़ सब होए रेणा, जे दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा, दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना, तू ते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना, क्या को सुनो स्वामी, तू वड़ पुरख सो जाना। रघाओ मान अवमान मंद सो सेवक नाही, तत् समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही। तैन कहामन यो कीर्त करला, कथन कैन ते मुक्ता, गुरमुख कोई विरला। गात अवगत कछ नदर न आया, संतन की रेण नानक दान पाया।

सबसे दे आधार, सतगुर भजन कमावणे सच्चा इहो विचार, बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब शार, मेरे सज्जन हर हर नाम समाल, साधु संगत मन वस पूर्ण होवे काल, हरहाओ गुर समरत अपार गुर वड़भागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड़ अवर ना कोए, गुर करता गुर करण हार गुरमुख सती सोए, गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए, गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार, गुर दाता हर नाम दे उदरे सब संसार, गुर समर्थ गुण रंकार गुर ऊंचा अगम्य पार, गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार, जितड़े फल मन बाचिए तितड़े सब गुर पास, पूर्व लिखे पावणे साच नाम दे रास, सतगुर सरणी आया बाहुड़ नहीं विनाश, हर नानक कदे ना विसरो यो जियो पिंड तेरा सास, श्री राग महला पंजवा संत जनो सुन पाई हो चूटन सते नाए, गुर के चरण सरेवणे

गुण गाओ, सच खाना सच पहनना, सच्चे सच्चा नाओ, साध ग्रास ना विसर, सबल मूर्त गुर आप, गुर जेवड़ अवर ना दिसई, आड़ पैर थे जाप, नदर करे ता पाई है, सच नाम गुण तास, गुर परमेश्वर एक है, समय रहया सुमाए, जिनको पूर्व लिखया।

आओ। सर्ज गबादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हों तिन के बलहारने दर सच्चे सतियार, सीता ने जो पंखिया जाली बदक हाथ। गुर राखे से उबरे

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना किया करने हार, रवसा दीप अनूप जोत तिर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोचड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पय पंजना देख नरंजन पाए, गुप्त प्रगट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख सम कर जानिए शब्द ते सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास, सब दरते से जिन गए हाऊ सब बलिहारे जास, चौदुग मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भगति पाए विगुणिया मोकाला पद खोए, जिन्नी नाम सारे अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया

मारो वार सब सल आए आपको वडो वडेरी होए गुरमें आप ना चीनिए कै सुने क्या होए नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए श्री राग महला पहला बिन पिर तन सी गारी है जो बनबाद खुआर ना माने सुख सेजड़ी बिन पिर बा सीगार दू कणो दोहागणी ना कर सेज पतार मान रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम न पाई है शब्द मिले रंग होए हरहाओ पुर सेवा सुख पाई है हर वर सह सीगार सच माने पिर सेजड़ी गूढ़ा हेत प्यार गुरमुख जान सजानी है पुर मिली गुण चार सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए मन तन साज बगसया कीमत कहन न जाए हर वर कर सोहागणी निर्मल सचे नाए मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार इकत तागे राह मिले कल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए शब्द पछाणे रब रखे ना ते काल संताए साहेब अतुल ना तोलिए कस न पाया जाए वापारी बन जा रहे आए वजो लखाए तार कुमावे सच की लाहा मिले रजाए पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तुमाए गुरमुख तोल तोलाए सी सच तरा जी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कसने कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई है

प्रवरय बक्से पवित्र भंडार अरहाओ रे मन ऐसी हरसो प्रीत कर जैसी मछली नीर यो अलको तो सोकनो मन तन सांत शरीर व्यंजल कड़ी न जीवई प्रभ जाने अव पीर रे मन ऐसी हरसो प्रीत कर जैसी चातक मेह सर पर थल हरी आवले एक बूंद न पवी के कर मिले सो पाईए किरत पया सिर देह अरे मन ऐसी घर सो प्रीत कर जैसी जल दुध होए आवटन आपे खवे दुध को खपन ना दे आपे मेल सुनिया सच वडियाई दे अरे मन ऐसी घर सो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खेन पल नींद न सोवई जाने दूर हजूर मनमु सोजी ना पवे गुरमु सदा हजूर मनमुख गणत गणामणी तरता करे सोहोए ताकि कीमत ना पवे जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाईए सच मिले सुख होए सच्चा रहो न टुटे जे सरगुर पेटे सोए ज्ञान पदार्थ पाईए तिर पवन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरे जे गुण का घाक होए खेल गए से पंखणु जो चुगदे सर तल कड़ी के मोद के चलना खेल अज के कल जे तू मिले सो मिले जाए सच्चा पिड़ मल बिन गुर प्रीत न उपजे पौमे मैल न जाए सो हंग आ पछाणिए शब्द भेद पतियाए गुरमुख आ पछाणिए अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेलिए शब्द मिले पतियाए मानमुख सोजी ना पवे विछड़ चोटा काए नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए श्री राग महला पहला मानमुख फुले फुलाईए भूली ठौर न काए गुरबिन को न दिखावई अंधी आवे जाए ज्ञान पदार्थ कोया।

मैं तुझ बिन अवर ना पावई, तू पावे सुख होय। हरहाओ नाम सलाही रंग स्यों, गुर के शब्द संतोख। जो दिसे सो चलसी, कूड़ा मोह ना वेख। वाट बटाऊ आया नित चलदा सा देख। आखने आखे केतड़े, गुरबिन बूझ न होए। नाम डाई जे मिले सच रपे पद होए। जुत पावे से पले खोटा खरा न कोय। कुर सरनाई छुट्टिए मनमुख खोटी रास। अच ताद पासा की कड़ी गए शब्द विगा।

पहला राम नाम मन विद्या अवर के करी विचार शब्द सुरत सुख उपजे प्रवरतो सुसार क्यों पावे तू राख तू मैं घर नाम आधार मन रे सची खसम रजाए किन तन मन सा सिगारिया ते सेती लिवलाए हरहाओ तन बैसंतर होमिए एक रत्ती तोल कटाए तन मन समदा जे करी अन्तन अग्न जलाए।

राम नाम मन विद्या गुरदिया सदान मन बुद्धि केतिया केते वेद विचार केते बंधन जी के गुरमुख मोख द्वार सच्चो ओरे सबको ऊपर सच आचार सबको ऊंचा आखिए नीच न दिसे कोए एक ने पांडे साजे एक चानन क्यों लोए कर मिले सच पाइए दुर्बक्ष न मेटे कोए साध मिले साधु जने संतोख से गुर पाए अकथ कथा विचारिये ये सदगुरु महे सुमाए ई अमृत संतोखया दर गए पैदा जाए काड़कड़ वाजे किंगुरी अन दिन शब्द सुभाए विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए

आगे पूछना हो भाई जबेली कुर करतार, आप चिड़ाए छुट्टी है आपे बख्शन हार, मन गुजाने अपने धिया पूत संजोग, नारी देख विगासी है नारे हरख सो सोग, गुरमुख शब्द रंगावले तहे निस हर रस भोग, चित ले वित जामुन सागत डोल डोलाए, बार टूंड गुची है कर्म वस्त सुधाए, मन बखो में कर्म सी गुरमुख पल्ले पाए, साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण, रगत बिंद का यो तनो अग्नि पास पिराण, पावने के वस देवरी मस्तक सच निशान, बहुता जीवन मंगी है मुआरा लोड़े कोए, सुख जीवन तिसिया किए जिस गुरमुख वसिया सोए, नाम विहूने क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए, जो सुपने निस पुलिए जब लग निंद्रा होए, तू सरपन केवल जीड़ा अंतर होमे दोए, गुरमत होए विचारिये सुबना एव जग लोए, अग्न मरे जल पाईए जो बारक दूते माए, बिन दल कमन सो नाथिए।

सिद्ध बहे देश दान सोर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन शेख पीर सलार तार कूज कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माय वखाणी है विरला ता बूझे कोए नानक वखाणे बेनती जलथल मही अल सोए अलाओ अलाखे गम कादर करनगार करीम सब दुनी आवन जावनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनू आखिए जिस सिस न हो वी लेख असमार तरपी चलसी मुकाम ओही एक दिन रव चले निस सा चले तारका लख परोए मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए महले पहले सतारे अष्टपदियां श्री राग महला तीजा तार पहला अष्टपदियां एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत कीजे।

है, क्या माया कर्म कुमाए, तो सुख ए जो बद है, हम में कर्म कुमाए, पिन शब्दे परम न चूकई, ना विचों हम में जाए, पिन प्रीति भगत न होवई, पिन शब्दे थाए न पाए, शब्दे हम में मारिए, माया का प्रम जाए, नाम पदार्थ पाइए, गुरमुख सहज सुपाए, बिन गुर गुण ना जापनी, बिन गुण भगत ना होए, भगत वछल हर मन मसया, सहज मिलया प्रसोए, नानक शब्दे हरसा लाइए, कर्म प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा, माया मोह मेरे प्रभु कीना, अपे परम पुलाए, मनम कर्म करे नहीं बूझे, बिरथा जन्म गवाए, गुरबाणी इस जग में चानन, कर्म वसे मन आए।

पाए या सतगुरु मेल मिलाए। सत संगत में नाम हर उपजे या सतगुरु मिले सुभाए। मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए। सत बलिहारी गुर अपने विटो ये हर से ती चित लाए। सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से ती रंग राता। प्रभ निट वसे सबना कट अंतर गुरमुख विर ले जाता। नानक नाम मिले वडियाई पुर कै शब्द पछाता। श्री राग महला तीजा सहजे नू सब लोच दी बिन गुर पाया ना जाए। पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके भेखी परम पुलाए। गुर पेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए। भाई रे गुर बिन सहज ना होए। सबदे गीते सहज उपजे हर पाया सच सोए। हर हाओ सहजे गाव्या थाए पवे बिन सहजे कसनी बाद। सहजे की भगत उपजे सहज प्यार बैराग। सहजे गीते सुख सांत होए फिर सहजे जीवन बाद। सहज सलाह की सदा सदा सहज समाध लगाए। सहजे की गुण उचरे भगत करे लिवलाए। सब देगी घर मन वसे रसना हर रस खाए। सहजे काल वडारिया सच सुनाई पाए। सहजे हर नाम मन वसया सची कार कुमाए। देवड़ भागी जिन्नी पाया सहजे रहे समाए। माया विच सहज ना उपजे माया दूजे पाए। मनमुख कर्म कमावणे।

कहौती रैत जुगता जोगी कहत मुगता तपसी तपह राता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवे प्रकार पंडित वेद पुकार गृहस्थी गृहस्थ रमहता एक शब्दी बहु रूप अवधूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नहाता निरहार वर्ती आ परसा एक लूक न देवह दर्शा एक मन ही ज्ञाता ताट न किन ही कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता सागल उगत उपावा त्यागी शरण पावा नानक गुरचरण पराता एक ओंकार सदगुर प्रसाद श्री राग मुहल्ला पहला कार तीजा जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत न पाया थुर्ग मछ पयाल जियो होंवारी होंवारण कुर्बान तेरे नाव नो हरहाओ तू संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया वेख कीता अपना कर कुदरत पासा टाल जियो प्रगट पहारे जापदा सब नावे नू प्रतापदा सतगुर बाज ना पायो ता मोही माया जाल दियो सतगुर कौ पल जाई है जित मिले परमगत पाई है सुर नर मुंदन लोच दे तो सतगुर दिया बुझाए जियो सतसंगत कैसी जानिए जिथे एको नाम खानिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो क्यों जगत परम भुलाया आपो तुद खुवाया।

तेरे अंतर शब्द बसाया सईया से सोहागनी जिन सई नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया तिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नदर तरे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम खाणिए सतगुर बाज ना पायो तब तक की कर्म कमाए जियो हो सतगुर विटो कुमाया जिन प्रफुल्ला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माए सुमाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत तरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया तो करमस्तक तार जियो सब संजम रहे सियाण पा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरद सुमारिया कंठ लाए कह रखियोन लगे न तत्ती वाओ जियो मैं मंत्र प्रभु ते आया जिये इछेड़ा फल पाया सा पासा सिर खसम तू जप नानक जीवे नाओ जियो तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वरतदा जि भावे से बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया।

मेरे साध संगत नित मानिया सर्व सो सुख आनंद कन प्यारे हर तनम अंतर सीवते एक तिल नी विस्तरे प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखना जो तो किन्ने अपने तिना कु मिले हो गए आपे ही आप मोयो जस नानक आप सुने हो गए शांत प्रेम ठगोरी पाए रिहाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दो सब जोया भगत लखेण तरवस पए मन सरसुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सा मिट गए सखी मंगलो गाया यश पुजाया बौड़ ना माया होया कर गए लीने नानक प्र प्यारे संसार सागर नहीं पोया डखना साई नाम अमोल कीम न कोई जान दो जिन्ना पागम था गे से नानक हरंग मान दो शांत कहते पवित्र।

मीना गए आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएंदा आपे विच से बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुद हो बार किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद न सोवे जे तन खसम चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम विहूणिया रंग कसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया।

दीवान स्यो सो सबनी दीवानी मिलया जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखुरु ओस कै मुझ डिठ सब पापी तरिया ओस अंतर नाम निदान है नामो परवरिया नाओ पूजिए नाओ मनिए नाए केलवक सब हिरिया जिनी नाम त्याया एक मान एक चित से अस्थिर जग रहया। श्लोक महला तीजा आत्मा देव पूजिए गुर के सह सुपाय आत्मे नू आत्मे दी प्रतीत होए ता कर ही परचा पाए आत्मा अडोल ना डोलई गुर के पाए सुपाय गुर विण सहज न आवई लोभ मैल ना विचों जाए खिन पाल हर ना मन वसे तब अड़तर तीर्थ नहाए सच्चे मैल ना लगई मन लागे दूजे पाए धोती मूल ना उतरे जे अड़सड़ तीर्थ नहाए मनमुख कर्म करे अहंकारी सब दुखो दुख कमाए नानक मैला उजल तांथिए जा सतगुर माए सुमाए। महला तीजा मनमुख लोग समझाइए कदो समझाया जाए मनमुख रलाया ना रले पै किरत फराए लिव ताज दो रहा है हुक्मी कार कुमाए गुरमुख अपना मन मारिया सब कसवट्टी लाए मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल सत मन ही मंज सुमाए मन जो इसे सोले सच्चे सब सो पाए अमृत नाम सद पुंचिए गुरमुख कार कुमाए विण मने जे होरी नाल लुजना जासी जन्म गवाए मन मुखी मन हड़हारिया कूड़क सत कुमाए गुर प्रसादी मन जने हर सेती लिवलाए नानक गुरमुख सच कमावे मनमुख आवे जाए पौड़ी हर के संत सुनो जन पाई हर सतगुर की एक साखी जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक तिन जन लै हिरदे राखी हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुर बचनी से जे चाखी ते पया प्रकाश मिटिया अंधियारा जो सूरज रहन के राखी अदिष्ट गोचर अलख निरंजन तो देखिया गुरमुख आखी। श्लोक महला तीजा सतगुर से वे अपना सो सिर लेखे लाए विचों आप गवाए कै रहन सच लिवलाए सतगुर जिनी ना सेवे हो तिना बिरथा जन्म गवाए नानक जोत पावे सो करे ऐना किशु ना जाए। महला तीजा मन वेकारी वेड़िया वेकारा कर्म कुमाए दूजे पाए अज्ञानी पूज दे दरग है मिले सजाए आत्मा देओ पूजिए बिन सतगुर बूझ न पाए जब तब संजम भाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए नानक सेवा सुरत कमावनी जो हर भावे सो थाए पाए पौड़ी हर हर नाम जपो मन मेरे जित सदा सुख होवे दिन राती हर हर नाम जपो मन मेरे जित सिमरत सब केलख पाप लगाती हर हर नाम जपो मन मेरे जित दाल दे दुख भुख सब लह जाती हर हर नाम जपो मन मेरे मुख गुरमुख प्रीत लगाती जित मुख भाग लिखिया तुर साचे हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा सतगुरु जिनी ना सेवेओ शब्द न कीतो विचार अंतर ज्ञान न आयो मृतक है संसार लख चौरासी फेर पया मर जमे होए कुवार सतगुर की सेवा सो करे जिसनु आप कराए सोए सतगुर विच नाम निदान है कर्म प्राप्त होए साचर पे गुर शब्द स्यो तिन सच्ची सदा लिव होए नानक जिसनु मेले नाम विछड़े सह सुमावे।

असंत अनाड़ी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै, अंध अग्ञानी कदे ना सीझै। इस जुग मह राम नाम निस्तारा, विरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप करै सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म तर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना

राम तोड़ बंधन माया धर के कमलाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रभाव नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ सब माया कह बंद कह डान ले कह नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीते बहु पांत कर माया कहता ही जा लहा दे ता सुख मने तोटे मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे जन नानक हर हस तृप्तया फिर भूख न लागे गौड़ी बैरागण महला चौथा हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हो कुर्बानी गुरे अपने जिन विछड़िया मिलिया।

क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुरु बोले तब इसम हो जाए। हम जैसे अपराधी अबर कोई राखे, जैसे हम सतगुरु राख लिए छिड़ाए। तू गुरु पिता, तू है गुरु माता, तू गुरु बंधप मेरा सगा सगाए। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम घर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता,

जिस मिले मन होए आनंद, तो सतगुर कहिए मन की दुविधा बिन सजाए, हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा किरद मिले, हों खिनखिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा को मिले रखाओ, हर कृपा हर मिलिया मेरा सतगुर पूरा, इस पुनी जन केरिया लिस गुर तूरा, हर भगत रड़ावे हर भगत सुने तिस।

तिस गुर मिल उदरै हर गुण गा वाही। महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रकीनी। मेरे मंत्र मुख हर बोली गुरमुख रंग पया अत गूड़ा। हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभु की हो गोली। जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली। अरहाओ करो विवेक संत जन पाई खुज हिरदे देख टंडोली। हर घर रूप सब जोश सबाई हर निटवसे हर कोली। हर घर निटवसे सब जाके अपरंपर पुरख अतोली। हर घर प्रट कियो गुरपूर है सिर वेचो गुर पै मोली। हर जी अंतर बाहर तुम शरणागत तुम वड़ पुरख वडोली। जन नानक अनदिन घर गुण गावे मेले सतगुर गुरु वे चोली। गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी। जगदीशर पुरख विधाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी। तित मार्ग हम जाते आराम मेरा मान हर से तीराते। सत संगत मिल राम रस पाया हर रामे नाम समाते। रहाओ हर घर नाम हर घर जग अवखद हर घर नाम घर साते। जिनके पाव दो सा बिनसे जो गुरमत राम रस गाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते। दुरमत मैल गई सब तिन की जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप ठाकुर आप

करो कृपा जग जी मन दाते, मेरा मन हर सेती राचे, सदगुर भजन दियो अत निर्मल, जप हर हर हर मन माचे, राम मेरा मन तान बेद लियो हर साचे, जे काल के मुख जग सब गरसया, गुर सदगुर के बचन हर हम बाचे रहाओ, जिन को प्रीत नहीं घर सेती ते सागत मूढ़ नर काचे, तिन को जन्म मरण अद पारी विच विष्टा मर मर पाचे, तुम दयाल सरण प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे, हर के दास दास हम कीजे, हम नृत्य करे कर नाचे, आपे सावडे प्रस्वामी हम वन जारे है ताचे, मेरा मन तन जियो राज सब तेरी, जन नान के सा प्रसाचे, गौड़ी पूर्वी महल्ला चौथा, तुम दयाल सर्व दुख पंजन एक बिनो सुनो दे कान, चेते तुम्हार जाने स्वामी तो सदगुर मेर मेरा प्राणे, राम हम सदगुर पार ब्रह्म कर माने, हम मूढ़ मुग्ध अशुद्ध मत होते, गुर सदगुर के बचन हर हम जाने रखाओ, जितने रस अन रस हम देखे तब तितने फीक फीका ने, हर का नाम अमृत रह चाखेया, मिल सदगुर मीठ रस गाने, जिनको गुर सदगुर नी पेटेया, ते सागत मूढ़ देवाने, तिनके कर्महीन थुर पाए, देख दीप कमोए पचाने, जिनको तुम दया कर मेलो ते हर घर सेव लगाने, जन नानक हर हर हर जा प्रगटे, मत गुरमत नाम समाने, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन तो प्रसदा ना लगे स्वामी, तो किथे हर पौ नसीए, हर आपे बख्स लए पर साचा, हर आप छुड़ाए छुटिए, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए, सदगुर की शरण आई भजको मेरे मना, गुर सदगुर पीछे छुट्टी है रहाओ, मेरे मन सेवो सो पर सर्व सुख दाता, जित सेवे निज कर वसीए, गुरमुख जाय लहु कर अपना, तस चंदन हर जस तसीए, मेरे मन हर घर हर घर हर जस उत्तम, लै लह हर मन हसीए, हर आप दया कर देवे ता अमृत हर हस चखीए, मेरे मन ना बिना जो दूजे लागे, ते सागत नर जम कुटीए, ते सागत चोर जिन्ना नाम सारिया, मन तिन के निट ना पिटीए, मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर, जित सेवे लेखा छुकीए,

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदिन नाम जपी सुख पाई निर्जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंत बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदिन अंध पया बड़पागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया केरी।

दैद चल चल हांडे गुर पूरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठांडे राम हम सतगुरु लाले कांडे रखाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे पर विकार पुन बहु किया हो दुत्तर पार पराडे जिन को प्रीत हृदय हर नाही तिन पूरे गांडन गांडे ज्यो पानी कागद बिनस जात है तो मन गर्भ गलाडे हम जाने कछु न जाने आखे ज्यो हारा खे तो ठांडे हम पूर चू गुर कृपा तारो क्या नानक उतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो परिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हर ले मंडल मंडा है पर साधु अंजलि पुन वड्डा है का

आवे। हर जन हर हर नाम समान, दुख जन्म मरण पव खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहुत शोभ खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रातेरे, हर राख राख वड वड्डा हे, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नाम में ही सुख मंडा है, गौड़ी पूर्वी मोहल्ला चौथा, इस गढ़ में हर राम राय है।

प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आ विच आया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे हरहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हिरदे गुरमत राम रसायण जे वा हर गुण गावे। मन रसक रसक रस आघाने फिर बोर ना पूख लगावे। कोई करे उपाप अनेक भो तेरे फिर कृपा नाम न पावे। जन नानक हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दिरड़ावे। राग गौड़ी माज मोहल्ला चौथा गुरमुख जिंदु जप नाम करम्मा। मत माता मत जियो नाम करामा। संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा। वड़भागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो। गोर हा रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो। वड़भागी मिल सूड सुजानी जियो। मेरा मन तनहा रंग पिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा। वे संगत नाम सदा ले लाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूर्व लिखड़े तुर कर्मा तामन वर्ष अमृत जग छाया जियो। मन मोर को केड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज मोहल्ला चौथा। आओ सखी गुण कामन करीहा जियो। मिल संत जना रंगमाने रलिया जियो। पुर दीप ज्ञान सदा मन बरिया जियो। हर तुठे टोल टोल मिलिए जियो। मेरे मंत्र प्रेम लगा हर टोले जियो। मैं मेले मित्र

एक खावे बख्श टूटने आवे, एक ना फक्का पाया जियो, एक राजे तख्त बहे नित सुगिये, एक ना पेख मगाया जियो, ताबिको सबत वर्तदा मेरे गोविंदा, जन नानक नाम ते आया जियो, गौड़ी माज मोहल्ला चौथा, मन माही मेरे गोविंदा, हा रंग रता मन माही जियो, हा रंग नाल ना लखिये मेरे गोविंदा, और पूरा अलख लखाही जियो, हर हर नाम प्रगासे।

जियो हर अंतर नाम निधान है मेरे गोविंदा गुरशब्दी हर प्रभ गाजे जियो आपे शरण पवाएदा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजे जियो वडभागी मिल संगति मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिद्ध काजे जियो गौड़ी माज मखला चौथा मैं घर नामे घर बिरो लगाई जियो मेरा हर प्रामित मिले सुख पाई जियो हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सगागर पाई जियो गुण गावो संत जियो मेरे घर प्रभ केरे जियो जब गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर घर नाम जियो प्राण घर मेरे जियो फिर बौड़ ना पवजल फेरे जियो क्यों हर प्रभ वेखा मेरे मन तन चाओ जियो हर मेलो संत जियो मन लगा पाओ जियो गुर सबदी पाई गए घर प्रीत मराओ जियो वडभागी जपनाओ जियो मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रव्यासा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रापासा जियो गुरमत नाम सदा प्रगासा जियो जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो गौड़ी माज मगला चौथा मेरा बिरगी नाम मिले ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत घर लीवा जियो मान हर अंगरतड़ा हर सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा घर बाण जियो मेरा प्रीत मित्र घर पुरख सुजान जियो गुरमेले संत हर सुड़ सुजान जियो हौ ना मिटो कुरबान जियो हौ हर घर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी।

मिटे कलेश सुखी होए रही है। ऐसा दाता सतगुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, रहाओ जिस होए दयाल आप मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाणा।

पाते मोय असनाहा, मीत हमारा अंतरजामी, समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। हम दासे तुम ठाकुर मेरे, मान महत नान प्रा तेरे, गौड़ी महला पंजवा। जा को तुम पै समर्थ अंगा, ताको कछ नाही कालंगा। माधव जाको है आज तुम्हारी, ताको कछ नाही।

एक टकाई। दुख बिन से सुख हर गुण गाए, और पूरा पेटा लिवलाए रहाओ। हर का नाम दियो गुरु मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत।

पूरे जब कृपा करी, पंत नानक मेरी पूरी परी, गौड़ी महला पनवा, अनकरसा खाए जसे टोर, मोकी जेवरी बध्य चोर, मृतक दे सासंग बिहुना, आत जात जोनी दुखी ना रगाव, अनक बस्त्र सुंदर पहराया, जो डरना खेत मैं डराया, सगल शरीर आव सब काम, निफुल मान को जपे।

पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उधरे जन कोट रखाओ। जेते जीते ते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सूह कनेरे। जुगज वरते सब तेरा पाणा, हुकम बूझे सो सच समाणा। हर कृपा दीजे प्रदान, नानक सिमरे नाम निधान। गौड़ी महला पंजवा, ताका दस पाई गे वडभागी। जाकी राम नाम लिवलागी, जाके हर वसिया मनमाही। ताको दुख सुपने पी नाही, हरहाओ सरबन धन राखे जनमागे। ताके संग केल विख दुख जाहे, जन की महिमा कसी न जाए। पार ब्रह्मज न रहया सुमाए, हर कृपा प्रभु बिनो सुनीजे। दास की तूर नान को दीजे, गौड़ी मोहल्ला पनवा। हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसे मने आए।

उतरै जाए, बिन घर सिमरन सुख नहीं पाया, आरंग फीके सा माया, गुरंगे से पए निहाल, कहो नानक गुर पए है दयाल, गौड़ी मोहल्ला पंजवा, सिमर स्वामी किल बिखनासे, सोग सहज आनंद निवासे, राम जना को राम भरोसा, नाम जबत सब मिट्यो अंदेसा, रहाओ सा संगत पौ ना प्राति, गुण गोपाल गाय गे दिन राती, हर किर प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दिनी ओट, कहो नानक।

तोग सहज सांत आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास सासंग घाटी कहो नानक प्रभ अवधा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सा मिटे कलेस चरण कम मन में परवेश उचरो राम नाम लख बारी अमृत रह पीओ प्यारी रखाओ सोग सहज रसमहा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लो मद खोए साध के संग किलब सब थोए हर कृपा प्रो दीन दयाला नानक दीजे सादर वाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पहने खाए इस आस क्यों बने माए खमसार आन कम लागे हौडी बदले रतन त्याग गए रखाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत का शोभा अमृत रस खावे खान पान जिन दिए तसे न जाने स्वान कहो नानक हम लून हरामी बगस लो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मनमय ध्यान सगल तीर्थ मज्जन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोड़ जन्म की मन ले जाई रहाओ हर की कथा हृदय बसाई

मिल नानखर अंतर जामी गौड़ी मोहल्ला पंजवां आड़ पर संगी पटवारे हर कृपा प्रलय निवारे ऐसा हार सरमो सब कोय सर्वकला पूर्ण प्रसोए रहाओ महा तप्त सागर संसार प्रखिर में पार उतारन हार अनक बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुक्त फल पाहे उक्त सियानप इस्ते कशनाहे हर कृपा नान गुण गाहे गौड़ी मोहल्ला पंजवां थाती पाई हर को नाम बिचर संसार पूर्ण सब काम वडभागी हर कीर्तन गाई है पार ब्रह्म तू देता पाई है रहाओ हर के चरण हृदय उतार पाल सागर चढ़ उतरे पार साधु संग करो सब कोय सदा कल्याण फिर दुख न होए।

सोपाया मया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग हर हर नाम हस्त्र सुहाग। गौड़ी मोहल्ला पनवा तोती खोल विशाए हेठ गर्द वांगू लागे पेट। बिनकर तूती मुक्त न पाई है मुद पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इस नाना

शरण परे प्रभ अंतर जामी, नान कोट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा। हर संग राते पाए ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुभल फला, सप मिटे तुम्हारे नाय, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे।

संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी, मोको अचरज गुरे दिखायो, पयो प्रगास सर पुजियारा, गुर ज्ञान मने प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्तया, अनपय ठहरायो, मान आज्ञा सर सो पाए, दुखे ठाओ गवायो, जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकुर, तब आनंद रूप दिखायो, ना किस आवत ना किस जावत, तब खेल की उहर आयो, तो नानक अगम अगम है ठाकुर, भक्त ते कर नायो, गौड़ी मखला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मनता की ओढ़ भी जय रे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम ज पी जय रे रखाओ मन की मत त्यागो हर जन सुगम बुझ सुख पाइये रे तो प्रभ करे सोई फल मानो सुगद ओई त्याई गे रे ओढ़ पत ओधारे खिन में करते बार ना लागे रे दीन दर्द हो पंजन स्वामी जे भावित से निवाजे रे सब को माल पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागर रे तेंदे तोड़ नहीं तस करते पूरे और तनागर रे जाजग जाते नाम तेरा स्वामी कड़कड़ अंतर सोई रे नानक दाता की शरणाई जाते बिरथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद हर घर कबू ना मनो विसारे ईगा उहा सर्व सुख दाता सगल कटा प्रतपारे रखाओ महा कट काटे पीतर रसना नाम पितारे शीतल सांत सुखर सरणी जलती अगन निवारे गर्भ कुंड नरक ते रख हजल पारे उतारे चरण कमल आरा तुम मन में जमकी त्रास बिदारे पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगमे पारे गुण गावत त्यात सुख सागर जुए जन मनागारे ताम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सत बरेगारे राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सुगना ही रे घर भगत बेना जीत जन रतने मूर्ख सा संगत जप एक ना रहाओ सुत संपत बनता बिनोद छोड़ गए बो लोग भोग हैबर गैबर राज रंग जा चले गए मूड रंग चूवा चंदन दे पूलिया सो तन तरसंग रूलिया मोय मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मान कर तरबे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोध पार ग्राम नो रखाओ कल कालक अंधियारिया गुर ज्ञान दीप उजियारिया बिख बिखिया पसरी अत कनी उबरे जब जब हर गुनी मतवारो माया सोया गुर पेड़ प्रम पखोया कहो नानक एक तिहाया काड़ कर नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक सेवा तारी गुरे टेक रखाओ अंग जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले लाया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बगसी बजो मिल एक नाम सोग सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से पले नानक तेन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जीरे ओला नाम का अवर दे करन कराम नो तिन मैं पौ है जाम का रखाओ अवर जतन नहीं पाई है वडे पा घर त्याई है लाख इकमती जानिए आगे तिल नहीं मानिए अंग बुद्ध कर्म कुमामने ग्रे बालू नीर बगामने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नाम हो नाम सब को प्राण अधरिया रहाओ करन करावन तुही एक जी जंद की तुही टेक राज ओम प्रा तू तनी तू निर्गुण तू सरगुनी ईगा ऊगा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रसुजान नांग तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर घर हर आरा दिए संत संघर मन मसे पर मोह पो सदिये रहाओ वेद पुराण सिमरत पने सब ऊच ब्राजत जन सुने सगल स्थान पे पीत कीन राम सेव कह रहत कीन लख चौरासी जून फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे बाल बुस जान पहो में रही हर सा शरण नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाई है नीत नीत घर सेवी है सास हर त्याई है रखाओ संत संघर मन मसे दुख दर्द अनहेरा प्रमन से संत प्रसाद हर जापी है तो जन दुख ना व्यापी है जाको गुरु हर मंत्र दे तो उबरिया माया अगनते नानको प्रमया कर मेरे मन तन वसे नाम हर गौड़ी महला पंजवा रसना जपिए एक नाम ईगा सुख आनंद कना आगे जी के संग काम रखाओ
ਕਟਕੇ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਰੋਗ, ਤੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਰਾ ਜੋਗ, ਹਰ ਜਨ ਜਨ ਚਾਖਿਆ, ਤਾਕੀ ਤਿਸ ਨਾ ਲਾਥੀਆ, ਹਰ ਵਿਸਰਾਮਦ ਪਾਇਆ, ਤੋ ਬਹੁਰ ਨਕਤ ਹੀ ਤਾਇਆ, ਹਰ ਘਰ ਨਾਮ ਜਾਕੋ ਗੁਰਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਪਉ ਗਿਆ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਕੋ ਬਿਸਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਤਾਉ ਕੋ ਪੀਰ, ਸਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਹਰ ਅਵੇ, ਸੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਰਖਾਓ, ਜਾਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਬੁੱਧ, ਤਾਕ ਕੇ ਕਰਤਲ ਨਵਨ ਸਿੱਧ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤਨੀ, ਇਸ ਨਾਹੀ ਤਾ ਕੇ ਕਮੀ, ਕਰਨੇ ਘਰ ਪਛਾਣਿਆ, ਸਰਬ ਸੂਹ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਹਰ ਤਨ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਦੁੱਖ ਨਸੈ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੜਬੜੋ ਮੂਲ ਇਤਨੋ, ਵਹਿ ਨਹੀਂ ਗੋ ਕਿਤਨੋ ਰਹਾਓ, ਬੇ ਬਰਚ

आदो एव मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, याते थिर न रहाई। रहाओ कठन क्रोध कट ही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई। रतन ज्ञान सब को हर लीना, तासु कछ न बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला, ताओ सबिद बन आई। गौड़ी महला नामा, साधो गोविंद के गुन गावो। मानस जन्म अमोल पायो, बिरथा काए गवाव और हाओ। पतत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुम आओ। गाय को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे बिसरावो। ताज अभमान मोह माया फोन, भजन राम चित को माई। उल्ले ओ मन समझाए, वेद पुराण साध मग सुनकर। निमखन हर गुण गावे रखाओ, दुर्लभ दे पाए मानस की। बिरथा जन्म सिरावे, माया मोह महासंकट बान। तास्यो रुच उपजावे, अंतर बाहर सदा संग प्रभ। तास्यो निहो न लावे, नानक मुक्त ताए तुम मानो। जे कड़ राम सुमावे, गौड़ी महला नावा। साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण।

मन त्रिवतास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रख हो रखवाले, बिन बूझे पशु पय बेताले, गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा, संत हेद पर तिरपमन तारे, आत्म चीने सो तत् विचारे, साज हृदय प्रेम निवास, परमत नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्मे गर्व किया नहीं जानिया, वेद की विवत पड़ी पछतानिया, जय प्रसमरे तई मन मानिया, ऐसा गर्व बुरा संसार, जिस गुर मिले जिस गर्व निवार रहाओ, बल राजा माया अहंकारी, जगन करे वो पारे वारी, बिन गुर पूछे जाए पयारी, हरि चंद दान करे जस लेव, बिन गुर अंत न पाए अपेव, आप पुलाए आपे मत देव, दुर्मत हरणास दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, फूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्व गया बिन सदगुर हेत, सहस बहु मद कीट मैं खसा, हरणास ले नहो बेदासा, दय संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संध काल जमना सिंघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दय सिंघार संत निस्तारे, आपे सदगुर शब्द बीचारे, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साहिब भगत निस्तारे,

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भोर नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल भाए उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हड़ कर मरे न लेखे पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बहुत पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख, नाम सार

न नहीं रीस है। इस पर जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा, नानक चीन ने आप कहो सो अपर अपारा। तब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिए सब ब्रह्म सुमाया। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे पूले आप हो जाओ। मानमुख सूतक कभे न जाए, जितिर शब्द न पीजे हर कहे नाए। रहाओ सबो सूतक जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार। सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सदगुर सेवे सूतक जाए, मरे ना जन्मे काल ना खाए। शास्त सिमरत सो देखो कोए, विण नावे को मुक्त ना होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतरस पार। साचा मरे ना आवे जाए, नानक गुरमुख रहे सुमाए। गौड़ी महला तीजा गुरमुख सेवा प्राण आधारा, हर जू राखो हृदय उरतारा। गुरमुख शोभा साज दुआरा, पंडित हर पढ़ तजो विकारा। गुरमुख भौजल उतरो पारा रहाओ, गुरमुख विचो हो में जाए। गुरमुख मैल ना लागे आए, गुरमुख नाम से मन आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बुझो सोई। लोग समझावो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई। मनमुख डंप बहु चतराई, जो कुछ कमावे सो थाए ना पाई। आवे जावे ठौर ना काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना। बागजो लाए बहे नित्याना, जा पकड़िया तब ही पछताना। बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई। गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पद नामे वड्याई। सायर की पुत्री बिदार गवाई, नानक बिन नावे झूठी चतराई। गौड़ी महला तीजा ए जो का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुरसब सोजी पाई। ऐथे अगे हर नाम सुखाई, आराम पढ़ो मन करो विचार। गुरप्रसादी मैले उतार रहाओ, वाद विरोध न पाया जाए। मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच ले लाए। हौ में मैला एओ संसारा, नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा। बिन गुर पेटे जम करे खुवारा, सोजन साचा दे हौ में मारे। गुर के शब्द पंच संघारे, आप तरे सगले कुल तारे। माया मोहे नट बाजी पाई, मानमुख अंदर है लपटाई। गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी। अंतर से न फिरे अंकारी, आप न चीने बाजी हारी। कापड़ पैर करे चतराई, माया मोहे अद परम फुलाई। बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रते सदा बैरागी। गृह अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवा से वड़फागी। गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तेते उपजे दे मोह प्यासा। त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम घर राखे सदगुरु मिलाया। अन दिन भगत घर नाम दृढ़ाया रहाओ, त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला। पढ़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत ना चीने बन्ने पंड पराला। मानमुख अज्ञान कुमार्ग पाए, हर नाम सारिया बहु कर्म दृढ़ाए। पवदल डूबे दूजे पाए, माया का मोहताज पंडित कहावे। विख्या राता बहु दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नितकाल संतावे। गुरमुख जम काल

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, हरहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, कोड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

एक नाम ले मने परो यैया जन्मन हारिये पुर पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ये बिखया दिन चार छे छाड़ चले सब कोय ताको मात पिता सो तिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिनसत नाही बासे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपट रहे आहो आवे जाए। टहे तो टहे अब टहे परे, साजना सरनाए दुके फाहे काटिया, नानक लिए सुमाए।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कटरहे समाई नानक ते जन मिली वडाई श्लोक नानक नाम नाम जब जपया अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया नरक नाए सा संग पौड़ी नन्ना नरक परे ते नाही जाके मन तन नाम सही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना ओए खपते नन्ना कार न होता ताको ना मंत्र गुर दीनो जाको निद निधान हर अमृत पूरे ते बाजे नानक अनघ तूरे स्वरूप पतरा की गुर पार ब्रह्म तय प्रपंच मोह विकार नानक सु आरा दिए अंत न पारा वार पौड़ी पप्पा परमित पार न पाया पत्र पावन अगम हर राया होत मुनीत कोड अपराधु अमृत नाम जपे मिल साधु पर पत्रो मोह मिटनाई जाको राखो आप गुसाई पात साहो छत्र से सो नानक दूसर अवर

फिरत तू आया दुर्लभ दे कल जुग में पाया। फिर आस चरे न हाथा नाम जपो तो कटिए फस फिर आमन जान न होई। एक एक जपो जसोई करो कृपा प्रो करने हारे मेले हो नानक बेचारे। स्लोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल सो संपे भोग रस नानक साधरवाल। पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा बीरा आपन बुरा मिटावे ताहू बुरा निट नहीं आवे। पद्यो आपन हो बंदा दोष देत आगे को अंधा बात चीत सब रही सियान जिसे जनावो तो जाने। नांग स्लोक पय पंजन अग दुख नास मने अराध हरे संत संगजे बसयो नांग ते ना प्रमे। पौड़ी बब्बा परम मिटावो अपना यह संसार सगल है सुपना परमे सुरनर देवी देवा परमे सिद्ध साधक भय मेवा परम परम मान खुटेताय दुत्तर महाभिखम ए माए गुरमुख परम पय मोह मिटाया नांग ते परम सुख पाया। श्लोक माया डोले बहु विधि मन लपट्यो ते संग मांगन तेजे तुम रखो तो नानक नामे रंग। पौड़ी मम्मा मांगन हार ए आना देन हार दे रहो सुजाना जो दीनो सो एक कहे बार मन मूर्ख कह करे पुकार जो मांगे तो मांगे बिया जाते कुशल न कहू तिया मांगन मांगता एक माक नांग जाते परे पराग। श्लोक मधपुरी प्रदान ते गुरपुरे मनमंत जे जान्यो प्रभे अपना नानक ते भगवंत। पौड़ी मम्मा जाहू मरम पछाना भेटत सासंग पतियाना दुसुआ के संत बिचारा नरक सुर्ग रहत अवतारा ताहू संग ताहूर निर्लेप पूर्ण कटकट पुरख बसेख हो रस में तवाहू सो पाया नानक लिप्त नहीं ते माया। श्लोक यार मीत सुन साजनो बिन घर छूट नाहे नांग ते बंधन कटे गुर की चरणी पागे। पवड़ी यैया जतन करत वो विधिया एक नाम मिन कह लो सिधिया यौ जतन कर हो छुटा।

मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जय महा भयान दूध जम दलै तै केवल नाम संग तेरा चलै। जय मुस्कल होवे अद पारी हर को नाम खिन महे उधारी। अनक पुणे चरण करतनी तरै हर को नाम कोड पाप पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे। सरसठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तर। अनक माया रंग तिघना बुझावे हर का नाम जपत आघावे। जे मार्ग इहो जात अकेला तय हर नाम संग हो सुहेला। ऐसा नाम मनस दा त्याई है नानक गुरमुख परम गद पाई है। टूट नहीं कोट लख बाही नाम जपत ते पार पराही। अनक बिघन जय आए संघार हर का नाम तत्काल उधार। अनक जून जन्म में मर जाम नाम जपत पावे विश्राम। हो मैला मल कभू न थोवे हर का नाम कोड पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साध के संग। जे मार के गने जाए न कोसा हर का नाम उहा संग तोसा। जे पैंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा। जहां पंत तेरा को ना सुजाना।

सगल कटा को देव उदान करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उत्तम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कड़ वसे।

अंत सगल समगरी तुमरे सूत्र थारी तुमते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए नानक कहू न सीजई पिन नावे पद जाए अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे एक बस्त कारण बिखोड़ गवावे एक पी ना दे दस पी हिर ले तो मूड़ा को खां करे जे ठाकर सो ना ही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रा मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत सो अपनी दे रास खाद पीत बरते अनदे उलास अपनी अमान कछ बहुर साहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी वस्त आगे रख प्रभु की आज्ञा माने मत उसते चौगुन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक पाद माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया सो रंग लावे ओ बिन से ओ मन पछतावे जो दिसे सो चलन हार लपट रहे ते अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावे नेह ताको हाथ न आवे केहे मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन तान कुटुंब सुबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोबन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे हस्त मिथ्या त्रो मोह अभमान मिथ्या आपसी ऊपर करत गुमान अस्थिर भक्त स्वाद की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत परत्र रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद मिथ्या चरण परवकार को थावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तान नहीं पर पुकारा मिथ्या बासले दिवकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सबल दे नानक हर हर नाम लय बिरती सा

की आरजा साध बिना के होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाय गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो किरपन के निरार्थ दाम तन तन ते जन जे कड़ बस्यो हरनाओ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जान नहार प्रभु परवीन पार पेख न काहू पीन अवर उपदेश आप न करे आपत जावत जन्मय मरे जिसके अंतर बसे निरंकार जिसकी सीख तरे संसार जो तुम पाने तिन प्रवजाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप करत नबेरा किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा उपाव स्यान पर सगर।

सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अवमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊज ते ऊंचा मन अपने गए सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब परमय ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह। ब्रह्म ज्ञानी कै नागी तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै हो सो फल ब्रह्म ज्ञानी सोबल फल। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रसंग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अंगबोध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सिद्ध का करता ब्रह्म ज्ञानी ता जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर तारे जो अंतर नाम सर्वमय पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानको अपरस सगल निस्तार अष्टपदी, नित्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रे रूपना पेखे नेतर साध की टहल संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा तबते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हरे मन की बासना मन ते टरे, इंद्रिजित पंच दुख ते रहत नानक कोड मध्य को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते होए पिन्न, कर्म करत होवे ने कर्म जिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बचे केवल भगत कीर्तन संग रचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल तब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानको वैष्णो परम गल पावे, भगवती भगवंत पगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिरसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सार संग पापा मन खोवे इस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्प विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे नान कैसा भगवती भगवंत कौ पावे, तो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम आत्म मैं शुद्ध, राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कै उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे तो पंडित फिर जो न आवे, वेद पुराण तिमृत बूझे मूल सूख मैं जाने अस्तूल, चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम, जो जो जपे जिसकी गद होए सा संग पावे जन कोय, कर कृपा अंतर और तार पास प्रेत मुग्ध पाथर कौतार, सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जूत कते न पाई गे धर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत रामदास आत्म राम तुझ नदरी आया, बाद संतन पाए तिन पाया सदा निकट निट हर जान, हो दास दर गए प्रवान अपने दास को आप कृपा करे, ते दास को सब सोजी पर सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म खेतावे, जीवन मुक्त सौ कहावे तैसा हरक तैसा ओ सोग, सदा अनंत नहीं बेयोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ता ऐसा ही जुत नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित का रखे तैसा तिन नाओ, आपे करन करामन जोग प्रभ पावे सोई पुन हो, पसर आप हो अंत तरंग लखे न जागे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल, श्लोक उस्तुत करे अनेक जान अंत न पारावार, नानक रचना प्रभृति बहुविध अंग प्रकार अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट बन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट सबका विचार, कई कोट नर्तन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पय अवमानी कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेग आत्मन कोर, कई कोट पर दर्व को हिरे कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लाभो ते तित लगना नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर प्यो पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए,
ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖੇਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਧਕ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰ ਤਰ ਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤ੍ਰਿਜੀਵ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਤੀਵ ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਪਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤਹੂ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਤਖੀ ਖਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਧਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕਹੇ ਹੱਥ ਕਈ ਕੋਟ ਪੈ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਲਨ ਵਿਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜਨ ਤੇ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖਨ ਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ ਦਿਨ ਕੋ ਮਿਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੇ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਤਨ ਤਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ।

प्रवते हुए प्रम है सुमात ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रसोय कई कोड़ पार ब्रह्म के दास तिन होते या तुम प्रगास कई कोड़ तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव अमर भय सदही जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस तुख सह सुमावे अपने जन कौ सा सा सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोय नानक बलिहारण जलतल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करने जोग जो भावे सोई होग खिन में था था पनहार अंत नहीं किस पारा वार हुक्मे तार अतार रहावे हुक्मे उपजे हुक्म सुमावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब में रहा सुमाई प्रभ भावे मानु गद पावे प्रभ भावे ता पात्र त्रावे प्रभ भावे बिन सास्ते रख प्रभ भावे ता हर गुण पख प्रभ भावे ता पतत उधार आप करे अपन विचार दुआ सिरिया का आप सुवामी खेले बिगसे अंतर जामी जो भावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मान गुते क्या होए आवे जो तु भावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तु भावे सोई करे अनजानत दिखिया में रच जे जानत अपने आप बच परमे पूला दर्द तावे निवख मैं चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जे अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दिश कशु न आवे तिस तत्काल दैज प्रटावे जाको अपनी करे बगसीस ताका लेखा ना गने जगदीश जियो पिण सत की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बाल नाई इस हाथ करण करामन सर्व

विचार कबू ऊब कस पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आम मिला मनहार कबू नित करे बोपात कबू सोए रहे दिन रात कबू महा क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू होए बह बड़ राजा कबो पेखारी नीच का साजा कबू अब कीर्त में आवे कबू पला पला कहावे जो प्रवरा के तिल ही रहे गुर प्रसाद नांग सच कहे कबू होए पंडित करे बखियान कबू मोन तारी लावे ध्यान कबू तड़ती स्नान कबू सिर साधक हो ज्ञान कबू कीड़ हस्पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखा।

तेन पुरख का उत्तम करमान, जो कुछ करे सो प्रभु के रंग, सदा सदा बसे हर संग, सह सुपय होवे सो होए, करणे गार पछाणे सोए, प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा त्रिटाना, जेते उजे तुमाए सुमाए, ओए सुख निदान उन्हू बने आए, आस को अवधि नो मान, नानक प्रभु जन एको जान। श्लोक सर्व कला परपूर प्रभ बिरथा जाननहार, जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार, अष्टपदी टूटी गंढ नहार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन मागे तिस ते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर।

गत नानक जब एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभु की जोत सगल कड़ सोह है तनवंता होए क्या को गर्भ है।

अनदरूप मंगल सुजाक सर्व शोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगते सुख पाया नानक पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मैं जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना बिद कीनो विस्तार प्रभ अवनासी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे।

रंग सेवक को प्रपालनहार सेवक की रखे निरंकार सो सेवक जे दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गत मित कोई ना लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दहत से प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख पसम करे लस्कर कोट लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य व्यर्थ जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्ब जिया का रखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए ई अमृत यो मन तन त्रपिए नामरतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मर्तन नामे नाम सुमा।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित्त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सा मीत बसारो चरण कमल हृदमय उर तारो करण कान सो प्रसमरथ विरड़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नारक मिट जाए ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस कोवनत बाछे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्वनदान मै हर नाम नदान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्ध हर कै नाए दैस ताव ते आवे ठाए ताको बिगन ना लागे कोए जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी

पसारे, तिस तज अवर कहां को जाए, सबस एक निरंजन राय, जी की जुत जाके सब गाथ, अंतर भार जानो साथ, गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार, पूर्ण पूर है दयाल, सभी ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो ब्याप, पर पाले जीन बोपात, जो जो रचियो सुत से त्यात, जे पावे ते लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हर नानक एक जानिया, जन लागा हर एक कहे नाए, इसकी आसना बिरती जाए, सेवक को सेवा बने आई, हुक्म बूझ परम पद पाई, इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार, बंधन तोर पए निर्वैर, अनदिन पूजे गुर के पैर, ए लोग सुगिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रव्या पे मिले, सा संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्र परमानंद, राम नाम तर करो विचार, दुर्लभ दे का करो उधार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का ए सुवाओ, आड़ पैर प्रापेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावो, मान इच्छे नानक बल पावो, हलत पलत तुल्यो सवार, राम नाम अंतर उर तार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे ते साज परीखिया, मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पो जाए, सच वापार करो वापारी, दरगे निभगे केव तुम्हारी, एका टेक रखो मन मागे, नानक बहुर न आवे जागे, तेते दूर कहां को जाए, उबरे रखन घर ते आए, निरपो जपे सगल पौ मिटे, प्रभु कृपा ते प्राणी छुट्टे, जे प्रवराखे तिस नाही दुख, नाम जगत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटे अहंकार, ते जन को कोई न पहुंचन हार, सिरी ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जा की दृष्ट, दर्शन पेखत उदर सिष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सबल दर्शन सुंदर घर रूप, तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसे सोहत निहाल, ताके निपटन आवत काल, अमर पय अमरा पल पाया, साध संग नान कर त्याया सलोक, ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास, अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु डीठा, ना प्रभु का लागा मीठा, सगल समिग्री एक सकट माहे, अनकरंग नाना दृष्टा है, नौ निद अमृत प्रभु का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाध अनघा तैनाद, कह न जाई अचरित विस्माद, तिन देखा जिस आप दिखाए, नानक हे जन सो जी पाए, तो अंतर सो बार अनंत, कड़कड़ व्यापराया भगवंत, तरण माय आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल, अंत पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट हृदय से सुमाहे, तिस्ते पिन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नान सुपाओ, वेद पुराण सिमृत में देख, ससियर सूर निखेत्र में एक, बाणी प्रभु की सबको बोले, आपे डोल न कब हूं डोले, सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाईगे गुणे अमोल, सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तारे ओ स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन में एओ विश्वास, संत जना का पेखन सा ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुने सो बचन, सर्वे अपी राम संग रचन, जिन जाता सिख की ए रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो हुए सोई सुख मान, करन करामन हार प्रभु जाने, अंतर बसे बार पी ओही, नानक दर्शन देख सा मोही, आप सत किया सब सत, ते प्रवते सगली उत्पत, ते पावे ता करे विस्तार, ते पावे ता एकंकार, अनक कला लखी न जाए, जे पावे ते लय मिलाए, कौन निटकम कहिए दूर, आपे आपिया परपूर, अंतर्गत जे आप जनाए, नांग तेजन आप बुझाए, सर्वभूत आप वर्तारा, सर्वनयन अपेखनगारा।

त्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण में हाजिए मलहो में कड्डे तोय, सच वणन जय रंग स्यो सच सौदा होय, टूटा मूल न आवई लहार पावे सोय, नानक तिन सच वणन जया जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए, पौड़ी साराई सच सालाना स सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मनवसे स सच्चा हरख वाले, स सच्चा जिनी अराध्या थे जाय रले सच नाले, स सच्चा जिनी ना सेवया थे मनमुख भूड़ बिताले, ओ आल पताल मोह बोल दे ज्यों पीते मद मतवाले,

पूर्व लिखया कमाए पौड़ी, जिनके चित कठोर है से बह न सतगुर पास, उथे सच वर्तदा पूड़ियारा चित उदास, वे वल छल कर चत कढ दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, वे सच्चे कूड़ न गड्डई मन वेखो को निरजास, कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवां, रहंदे खुंदे निंदक मारियन कर आपे आहार, संत सहाई नानका वरते सब जहार। महला पंजवां, मुंडो पुल्ले मुंडते किथे पाए नगत, तिने मारे नानका जे करण कर समरथ। पौड़ी पंजवां, लै फाहे राती तुरे प्रभ जाने प्राणी, तके नार पराइया लोक अंदर ठाणी, सन्नी तेन विखमथाए मिठा मदमाणी, करमी आपो अपनी आपे पछताणी, अजराईल फरिश्ता तिल पीड़े खाणी। श्लोक महला पंजवां, सेवक सच्चे साके सेई परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवां,

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी ओ सके ना लखे। श्लोक महला पंजवां नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवां नानक मित्राई ते सियो सब किश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रह ना काई सगला मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुल जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरणाई। श्लोक महला पंजवां डिठड़ो हवठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ जिन

पद हर प्रवान, सर्व त्याग फल केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगन फिरत जाओ पाई है जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम। जब नहीं चीन सयात्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई। बिंद राग जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बेन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यों पै दादर पानी माही, जाओ पै राम राम रत नाही, के सब धर्म राय कै जाही रहाओ। काया रत बहु रूपर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही, चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कर सागर। कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्व छोट

आप मोहे मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत सारी कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओ कुवटा ना पनहारी गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्म किए बहुरंगा ऐसे कार हम बहुत बसाए जब हम आराम गर्भ हो आए रघाव योगी जति तपी ब्रह्मचारी कबहू राजा शतरपत कबहू पेघारी सागत मरे संत सब जीव राम रसायन।

जी वे जो दिसै अंबर तारे तिन वे चीते चीतनहारे कौरे पंडित अंबर कास्यों लागा बूझे बूझन हास भागा रहाओ सूरज चंद करे उजियारा सामे पसरिया।

ग्वारेरी अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुखमो ना मांगया पावे बिकया अजो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना सो सुखमो साज कर जाना संकादक नारद मुन सेखा तिन पी तन मैं मन नहीं पेखा इस मन को कोई खुद जो पाई ता छूटे मन कहां सुमाई गुर प्रसादी जय दो नामा भगत के प्रेम इन ही है जाना इस मन को नहीं आवन जाना जिसका परम गया तिन साज पछाना इस मन को रूप न रेख्या काई हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई इस मन का कोई जाने पेओ ए मनलीन पय सुख देओ जियो एक अर सगल शरीरा इस मन को रव रहे कबीरा गौड़ी ग्वारेरी आहे निस एक नाम जो जागे केतक सिद्ध पय लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प तरतारे जो हर हरे सो होए न आना कहे कबीर राम नाम पछाना गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज लाज तोय नाही हर ताज कद काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जान पर कर जातन सोही सो साहेब रहया पर पूर सदा संग नाही हर दूर।

परम सियान एह चचा रचत चित्र है पारी ता चित्र चेतो चितकारी चित्र बचित्र ए अवचेरा ता चित्र चित राख चितेरा शशा ए शत्रपद पासा शक के ना रहो शाड़ के ना यासा रे मान मैं तो शिन शिन समझावा ताए शाड़ कद आप बंधावा जज्जा जौतन जीवत जिरावे जोबन जार चुगत सो पावे तस जार पार जार जर जबर है तब जय जोत उजार होल है जज्जा उर्ज सुज नहीं जाना रहो चलक नाही परवाना कात चग चग और समझावा चगर की है चगर होगी पावा न्यन्या निड जो कट रहे हो दूर कहाँ त जाए जा कारण जग टूडे हो नेरो पायो ताहे टट्टा विगट काट कट माही खोल कपाट मैल के ना जागी देख अटल टलकते न जावा रह लपट काटे पर चोपावा ठट्ठा ए दूर ठग नीरा नीट नीट मन की या तीरा जिन ठग ठग गया सगल जखावा सो ठग ठग गया ठौर मन आवा डड्डा डर उपजे डर जाई ता डर में डरया सुमाई जो डर डरे ता फिर डर लागे निडर हुआ डर उर होए पग टड्डा टेग टूंडे कतियाना टूंड ही टह गए पुराना चढ़ सुमेर टूंड जवे आवा जे गड़गड़े सो गड़ में पावा नाना ना रूतो नर नेही करे ना निवे ना फुन संचरे तन जन्म ताही को गणे मारे एक ता जाए खणे तत्ता अतार तरे हो न जाई तन तिरपाऊ में रहो सुमाई जो तिरपावन तन माए सुमावा तो तत्ते तत् मिलिया सुज पावा थत्ता अथा था नहीं पावा ओ अथा यो थिर न रखावा थोड़े थाल थान आरंभ बिनगी थंबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सुनहारा जस अदेख तजराक बिचारा दसवें द्वार ऊंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन कीजे तद्दा अर्धे उर्द नंबेरा अर्धे उर्दे मंज बसेरा अर्धे शाड़ उर्द जो आवा तो अर्धे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निर्दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत जब जय पावा तब ले निरखे निरख मिलावा पापा अपर पार नहीं पावा परम ज्योसो पर चोलावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरई पप्पा बिन फूले फल होई ता फल पंख लखे जो कोई दून न परई पंख बिचारे ता फल पंख सबे तन पारे बब्बा बिंद बिंद मिलावा बिंद बिंद न बिछर न पावा बंदो होए बंद भी गए बंदक होए बंद सुध लहे पब्बा फेदे पेद मिलावा आपो पान परोसो आवा जो पार सो पीतर जानिया पया पेद पौत पहचानिया मम्मा मूल गया मन माने मरमी हो सो मन को जाने मत कोई मन मिलता बिलमावे मगन पया ते सो सच पावे मम्मा मन सो काज है मन सदे सिद्ध होए मन ही मन सो कहे कबीरा मनसा मिलिया ना कोए यो मन शक्ति यो मन सीयो यो मन पंच तत् को जियो यो मन ले जो ओन मन रहे तो तीन लोग की बातें कहे यहीया जो जाने तो दुर्मत हान कार बस काया गाओ रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाओ रारा रस निरस कर जानिया ओए निरस थोरस पहचानिया हे रस छाडे ओरस आवा ओरस पिया ए रस नहीं पावा लल्ला ऐसे ले मन लावे अंत न जाए परम सज पावे अर जो तहां प्रेम ले लावे तो अले लहे ले चरण सुमावे ववा बार बार विष्णु सुमार न आवे हार बाल बल जे विष्णु तना जस गावे विष्णु मिले सभी सज पावे वाह वाह वाह ही जानिए वाह जाने यो होए यो आर हो

भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंभ अहिर अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज मैं बाय सोमवार सज अमृत चर त्यागत बेग सगल बिखर।

परगास, हृदय कामल मैं हर का वास। गुर मिल दो एक सम तरे, उर्द पंकले सूदा करे। बृहस्पति दिखिया देव बिखाए, तीन देव एक संगलाए। तीन नदी ते त्रिगुटी नागे, अंश कसमल तो वे नागे। सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े, अंत ने आप आप स्यो लड़े। सुरखी पंचो राखे सब, तो दूजी दृष्ट न पैसे कबे। थावर सिर कर राखे सोए, जोत दी वट्टी कड़ में जोए। बाहर पीतर पया परगास, तब हुआ सगल कर्म का नास। जावला कट में दूजी आन, तौलो महल ना लाभे जान। रमत राम स्यों लागो रंग, कहे कबीर ता निर्मल अंग। राग गौड़ी चेती बाणी, नाम दियो जियो की। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, देवा पान तारी ले। राम कहत जन कसना तरे, रघाओ तारी ले गनका बिन रूप कुबजा। ब्याल अजामल तारी ले, चरण बदक जन तेऊ मुक्त पए। औ बल बल जिन राम कहे, दासी सो जन बिद्र सुदम। उग्रसैन को राज दिए, जापहीन तपहीन। कोलहीन क्रमहीन, नामे के स्वामी तेऊ तरे। राग गौड़ी रविदास।

नदर करे जो कुछ करना सो कर रहा अवरण करना जाई जैसा वर्ते तैसो कही है सब तेरी वड्याई काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवत है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कहे आसा महला पहला वाजा मत पखाव जपाओ होए आनंद सदा मन चाओ एह भगत एहो तपताओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सत संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पौ फेरी होवे मन चीत बहद्या उड़द्या नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाहो ए तरंग नाचो रख रख पाओ।

उदासे मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अदक लगे हरहाओ फूल माला गल पैरो गीगारो मिलेगा प्रीतन तब करो गीसी गारो पांच सखी हम एक पतारो पेड़ लगी है जीड़ा चालन गारो पांच सखी मिल दुन करेगा सौ पजूता प्रणत नानक लेखा देख एक ओंकार सदगुर प्रसाद आसा कर सेवा महला पहला मन मोती दे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सीगार कामन तन पैर रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोगी तेरे गुण होए न अवरी रहाओ हर घर घर कंटले पैर दा मोदर दंत ले कर कर करता कंगन पैर इन चित तेरे मासूदन करमुंदरी पैर परमेश्वर पटले तीरज तड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदिर जे दीपक जले काया सेज करे ज्ञान राओ जब सेजे आवे ता नानक भोग करे आसा महला पहला कीता होवे करे कराया क्या कहिए पाई जो कुछ करना सो कराया कीते क्या चितराई तेरा हुकुम पला तु पावे नानक ताको मिले वडाई साचे नाम सुमावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बहुत हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई।

मन बैराग ब्रगत पयो हर दर्शन नीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके तैसे मोए हर बिन रहन न जाई। राग शरण जगदीश्वर प्यारे मोए सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कह मन अंध होत है हर दर्शन निमख दिखाई। राग आसा कर दूजा महला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया। जिन सुख बैठा ली तिन पौ बोध दिखाया। भाई नीत कुटंब देख विवादे हम आई बस गद गुर प्रसादे। ऐसा देख विमोत होए साधक सिद्ध सुरदेव मनुख बिन साधु सब त्रोहन त्रोह रखाओ। एक फिरे उदासी तिन काम में आपे एक संचे गिरगी तिन होए न आपे। एक सती कहावे तिन बहुत कलपावे हम हर राखे लग सतगुर पावे। तब करते तपसी फूलाए पंडित मोहे लोभ सुभाए। त्रैगुण मोहे मोया आकाश हम सतगुर राखे देकर हाथ। ज्ञानी की होए वर्ती दास कर जोड़े सेवा करे अरदास। जो तू कह सो कार कुमावा जन नानक गुरमुख नेड़ न आवा। आसा महला पंजवा ससु ते वर कीनी वाख दे जिठानी मोई दू संताप। करके जठेरे की चूकी कान ते रख्या कीनी सुड़ सुजान।

आग हो मारो अब हुन सोयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोयो, आंगन मेरे शोभा चंद, निसबसर प्रिय संग आनंद, बस्तर हमारे रंग चलूल, सगल अपर्ण शोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दिट पाए सगल निधान, दुट दूत की चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने,

रब रहे आप सबके साथ, पूरा गोर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई, आसा महला पंजवां, गुर के सब

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक एक सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु को नमस्कारे। आसा महला पंजवा, तू बेअंत अवगत अगोचर। यो सब तेरा आकार, क्या हम जंत करे चतराई। जहाँ सब

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बो करता करने गार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजा।

तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया तृप्त अघाए सही जन पूरे सुखनदान हर गाया जाको टेक तुम्हारी स्वामी ताको नहीं चिंता।

गुरपूरे के चरण गए, कोड जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी मया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन हर अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, हरहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना गीताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक है ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, हरहाओ आपे सूर किरण विस्तार, सोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक है की नो ठाव, कहो नानक गुर ब्रह्म पौ खोया, अंध रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु ना जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाव मूर्ख मुगध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम कर्म ना साधा, ना प्रभु का मने अराधा, किशु ना जाना मत मेरी तोरी, बिनवत नानक ओड प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर कृपा रखो शरणाई, मोको देव हरे हर जपनी, हरहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चैन आए, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब किसका होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो कुछ करे सोई फल जान के, आत निर्मल दास की जुगता, हरहाव सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुरपूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रा मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोए निर्गुण कौ लिहो उधारी, हरहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरमंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, हरहाओ मोह परम्बो जोन पवाया, अस्थिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक जो प्रसरण आई, ईहा सुख आगे गद पाई, आसा महला पंजवा। तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा।

तू समरथ मैं तेरा तान, आनंदन जपो नाम गुणतास, नानक की प्रपय अरदास। आसा महला पंजवा, रोमन हारे चूड़ कमाना, हस गा सोक करत बेगाना, को मुआ काके कर गावन, को रोवे को हस गद पावन। रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, फिर गुण मैं वरते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा। कहो नानक जो लाया नाम, सबल जन्मता का प्रवान। आसा महला पंजवा, सोए रही प्रभ खबर न जानी, और पया बौर पछतानी। प्रे प्रेम सहज मन अंध तरोरी, प्रभ मिलबे की लालसा, ताते आलस कहां करोरी। रहाओ कर्म अमृत आन निसारे, खिसर गयो तूम पर डारे। साध मुहे लादी अंकारे, दोष नहीं प्रभ करने हारे। साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिर जनहारे। आसा महला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे। तू चित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया। रहाओ अनक दुख देवे अवरा कहो, पहुंच न साके जन तेरे कहो। दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी। नानक की अरदास सुनी जे, केवल नाम हृदय मैं दीजे। आसा महला पंजवा, मन तृप्तानो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल। संत प्रसाद परी बनी, जाके गृह सब किस गए पूर्ण। तो फेटिया निर्भय तनी, रहाओ नाम दृढ़ाया साध कृपाल। मिड़गी भूख महा विकराल, ठाकुर अपने की नी दात। जलन बुझी मन होई सांत, मिट गई पाल मन सह समाना। नानक पाया नाम खजाना। आसा महला पंजवा, ठाकुर स्यो जाकी बने आई, भोजन पूर्ण रहे अगाई। पशु न थोरा हर भगतन को, खात खर्चत दिलशत देवन को। रहाओ जाका तनी अगम गुसाई, मानुख की को केत चलाई। जाकी सेवा दस अष्ट सिधाई, पालक दिष्ट ताकी लागो पाई। जा को दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। आसा महला पंजवा, जो मैं अपना सदगुर त्याया, तब मेरे मन मां सुख पाया। मिट गई गणत बनास्यो संसा, नाम

प्रीत सब निर्मल होए, सुनो मीत ऐसा प्रेम प्यार, जी प्राण घड़ घड़ आधार, रहाओ प्रभु की प्रीत पै सगल निधान, प्रभु की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभु की प्रीत स शोभावंत, प्रभु की प्रीत स मिटी है चिंत, प्रभु की प्रीत तो भव जल तरे, प्रभु की प्रीत जमते नहीं डरे, प्रभु की प्रीत सगल उधारे, प्रभु की प्रीत चले संगारे, आपो कोई मिले ना फूले, जिस कृपाल तिस सास संकूले, ओ नानक तेरे कुर्बान, संत ओढ़ पर तेरा तान, आसा मोहल्ला पंजवा, उबत होए के राज कमाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रवस्ते डार अवर को दीनी, काग गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ वाहू में परिया, रहाओ निरपो होयो पया निहंगा, चीतन आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संभाहा, निकस्या भूख ता होए गयो स्वाहा, ऊंचे मंदर मैल अररानी, हस्त कोड़े जोड़े मन पानी, वड़ परवार पूत अरतिया, मोए पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाह तिने बिनाहा, रंग रस जैसे सुबनाहा, सोई मुक्त इस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा मोहल्ला पंजवा, इन सो प्रीत करी कनेरी, जौ मिलिए तो बधे बधेरी, कल चमड़ी जो छोड़े नाही, लाश छुट्टो सगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन को मोह, बाढ़ घाट गिरे बन बन जोह, मतन लागे होए के मीठी, गुर प्रसाद में खोटी जीठी, अगर उसके वडे ठगाऊ, छोड़े नाही बाप ना माऊ, मिली अपने उनले बंदे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पाओ चूका टूटे सा फंद, कहो नानक ता सतगुर पाया, हर सगला में सुखी बसाया, आसा महला पंजवा, आठ पहर निट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सबकी पक्षार, संत रहे सुनो मेरे पाई, हुआ की महिमा कथन ना जाई, रहाओ वर्तन जाके केवल नाम, अंदर रूप कीर्तन विश्राम, मित्र सत्र जाके एक समान, प्रभ अपने बिन अवर ना जाने, कोट कोट अग काटन हारा, दुख दूर करन जी के दातारा, सूर वीर बजन के बली, तौला बपरी संति शली, ताका संग बाचे सुरदेव, अमोग दर्श सबल जाकी सेव, कर जोड़ नानक करे अरदास, मुझे संते टहल दीजे गुणतास, आसा महला पंजवा, सगल सुख जग एक के नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम, महा पवित्र साध का संग, जिस पेड़त लागे प्रवरंग, गुर प्रसाद होए आनंद पावे, जे सिमरत मन होए परगासा, ताकि गतमित कहन ना जावे, अरहाव वर्तनेम मजन से पूजा, वेद पुराण तिन सिमरत सुनी जा, महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम, प्रत्यो जोजन सगले पवन, पद पुनीत ताकि पगरेन, जाको पेट्यो हर हर राय, ताकि गतमित कथन ना जाए, आड़ पैर कर जोड़ तिहावो, उन साधा का दर्शन पावो, मुए गरीब को लिहो रलाए, नानक आए पै शरणाए, आसा महला पंजवा, आठ पैर उद किसनानी, तदी पोग लगाए सो ज्ञानी, बिरथा काहू छोड़े नाही,

सदा प्रफुल्ल काट काट संपट हय रे जाका अपग सभा संघ है सदा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त इस ही लेना संत चरण ओ आयो शरणा आचड़े हर साल गरा।

ऐसी स्त्री एक राम उपाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ पाए ठगौरी सब जग जोया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया गुरमुख नाम लगे से सोया वर्तनेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे ये सदगुर की सरना माया मोहे सबो जग बाधा हमें पचे मनमुख मुँह राखा गुरु नानक बां पकड़ हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब श्रे स्वामी ईगा उहा कामना प्राणी संतृप्ता से हर घर त्याए हर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख पर तुमरी रिजाए रहाओ संग होवत को जांत दूर सो जन्म मरता नित नित चूर जिन कछ दिया ए चित तनाहे मां बिखिया में दिन रहन जाहे कहो नानक प्रसिमरो एक गद पाईगे गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जबत मन तन सब हरिया काल मर दोख सगल पर हरिया सोई दिवस पला मेरे पाई हर गुण गाए परम गद पाई रहाओ साध जना के पूजे पैर मिटे उपद्रे मन ते बैर गुर पूरे मेल चगर चुकाया पांच दूत सब वस गद आया जिस मन वस्य हर का नाम नानक इस ऊपर कुर्बान।

सर्व सुख पावे, आवर कहू पे बौड़ ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मनवासी है रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली पांत सब सह समागी, जाकी बख्सना मेटे कोई, मन वासाई गे सचा सोई, सगल समगरी ग्रे जाके पूरन, प्रभ के सेवक।

ओंकार सदगुर प्रसाद मैं बंदा बैखरीद सच साहेब मेरा जियो पिंड सब किसदा सब किश है तेरा मान निमाने तू तनी तेरा परवासा बिन सचे अनटेक है सो जानो काचा रहाओ तेरा हुकुम अपार है कोई अंत न पाए जिस गुरपूरा पेड़ सी सो चले रह जाए चितराई सियाणपा किते काम न आई है तुठा साहेब जो देव है सोई सो पाई है जे लख कर्म कमाई है ई पवे ना बंधा जन नानक कीता नाम तार होर छोड़िया तंदा आसा महला पंजवा सर सुखा मैं पालिया हर जेब ना कोई गुर तुठे ते पाई है सच साहेब सोई बलिहारी गुरे अपने साध सर कुरबाना नाम ना विसरो देखन चसा यो कीजे दाना रहाओ भागट सच्चा सोए है जिसर तन अंतर सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कह गुर विवेक सत सर ओ आ जुगा दी जुग है जुग पूरा परमेश्वर नाम त्यावो सत सदा हर घर मन रंगे जियो प्राण तन गुरु है नानक कह।

गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी सिट सब रहाओ सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर नाम बिहू नड़िया से मरन विसूर विसूर दास दासन पाए मिटिया तिना गौन विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन जैसे पसहरे आओ तैसा संसार सब नानक बंधन काट मलाव आ प्रभ आसा महला पंजवा हब्बे थोक विसार इको ख्याल कर झूठा लाए गुमान मंत्र अर्प तार आड़ पैर साल आहे सिरजनहार तू जीवा तेरी दात किरपा करो मुंह रहाओ तोई कम कमाए जित मुख उजला सोई लगे सच जे तू दे अला जो न टहंदो मूल सो कर रास कर इको चित वसाए कदे ना जाए मर तिना प्यारा राम जो प्रापाणिया गुर प्रसाद अकथ नानक वखाणिया आसा महला पंजवा जिन्ना ना विसरे नाम से कनेहा खेद न जाणो मूल साई जेया मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया सो पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मंड उधारे तिनखे जिन मन मुठा आप पूरे भगत से जिसनु मन्ने आप सोई मानिए प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिए दिन सरैन आरात संभाले साहा सहा नानक की लोचा पूर सचे पातशाह आसा महला पंजवा पूर या सर्व ठाए हमारा खसम सोए एक सहब सिर छत दूजा नाहे कोय जो पावे त्यों राख रखन हारिया तुय बिन अवर न कोय नदर निहारिया रहाओ प्रद पाले प्रवे आप धड़कड़ सारिये जिस मन उठा आप तिस नाम सारिये जोज करे सो आप अपन पाणिया भगता का सहाई जुग जुग जानिया जप जप हरका नाम कदे ना चूरिए।

वो तड़ा है चरण मन चढ़ लंगी है, आड़ पैर गुण गाय साधु संगी है रहाओ। भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया, हर की भगत बिना मर मर रुनिया, कपड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना।

तद ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अब सागन किस को लग जे चीत न आवे हे जमनेड़ न आवई दुहर प्रापावे पुन दान जब तब जेते तब ऊपर नाम हर रसना जो जप ते पूर्ण काम पय बिनसे प्रम हो गए को दिसे न बिया नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया आसा कर नावा महला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद चितव चितव सर्व सुख पावो आगे पावो के ना पावो एक दा तार सगल है जाजक दूसर कह पै जाओ ओ मांगो आन ले जाओ सगल शद्र पद एको ठाकुर कौन समसर लाव रहाओ उठो बैसो रह पे ना साको दर्शन खोज खुजाओ ब्रह्मादक सनकादक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको मैल दुलपाओ आगम आगम अगाद बोध तीमद परय ना पाओ ताकि शरण सदपुरख की सदगुर पुरख ते आव पयो कृपाल दयाल प्रभु ठाकुर काट्यो बंद करावो कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म न आवो आसा महला पंजवा अंतर गावो बाहर गावो गावो जाग सवारी संग चलन।

मार्ग पंथ सुम्हारी नाम दृढ़ गुर मन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रैनी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विश्वास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नयन दर्श देखो।

अनेक क्रिय तब ऊपर नाम अचार काम क्रोध अहंकार विनस मिले सदगुरुदेव नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभु की सेव चरण शरण दयाल तेरी तू निमाने मान जी प्राण आधार तेरा नानका प्रतान आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना

मनोरथ सुहाओ तन तन तेरा तू प्रा मेरा हमरे बस किश नाह ज्यों ज्यों रख त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाह जन्म जन्म के किल विख कट मजन हर जन तूर पाए भगत परम पौ नस हर नानक सदा हजूर आसा महला पंजवा आगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग आप किरपाल किरपा प्रतारी सदगुर बख्शिया हर नाम काल युग उधारिया गुरदेव माल मूत मूर जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव रखाओ तू आप करता सब सृट तरता समय रहा सुमाए धर्म राजा बिस्माद होआ सब पई पैरी आए सजुग त्रेता द्वापर पणिए काल युग ऊतमो जुगा माहे अहे कर करे सो अहे कर पाए कोई ना पकड़िए किसे थाए हर जियो सोई करे

मो कुटुंब दिखे रसमते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोतियन लालन नह नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत ऊत कट कट कट कट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर घर नाम अमोला ओ सहज सुहेला हराओ संग सहाई।

छोड़ न जाई, ओ अगह अतोला, प्रीतम भाई बाप मोरो माई, भगतन का ओला अलख लखाया, गुर ते पाया नानक ओ हर का चोला, आसा महला पंजवा अपनी भगत निभागे, ठाकुर आयो आगे हरहाओ, ना पदार्थ हुए सकारत, हृदय चरण बसागे, ये मुक्ता ये जूता रखो संत संगाहे, नाम त्यावो सह समावो, नानक हर गुण गावे, आसा मोहल्ला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे, हर संतन पावे हरहाओ, आप गवाया सेव कमाया, गुण रस रस गावे, एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे, आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही, रहाओ नाम त्यावो हृदय बसाओ, जिबन को नाही प्रसरणी आएगे, सर्व फल पाईए सगले दुख जाही, जीन को दाता पुरख विधाता, नानक कट कट आही, आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ, रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे, सो जन सुखिया हुआ, राज कहावे हौ कर्म कमावे, बाध्यो नलनी प्रंसुआ, कहो नानक जिस सदगुर पेटिया, सो जन ने चलतिया, आसा महला पंजवा कार चौदवा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद ओहो निहो नवेला, अपने प्रीतम सिउ लाग रहे, रहाओ जो प्रापावे जन्म न आवे, हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय, प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे, नानक नाम मिले अपनी दया करो, आसा महला पंजवा मिल राम प्यारे, तुम मिल तीरज को ना करे, रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए, पर तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संजम कर थाके, नानक साध शरण प्रभु संग वस, आसा महला पंजवा तार पंद्रवा पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, विकार माया माद सोयो, सूझ बूझ ना आवे, पकर केस जम उठारियो, तही कर जावे, लोभ विखिया विखे लागे, हर विदचित दुखाही, खिर पंगना के मान माते, असुर जाने नागी, रहाओ वेद सतर जन पुकारे, सुने नाही डोरा, निपत बाजी हार मूका, पछतायो मन पोरा, ध्यान सगल गैर वजे, परया दीवान लेखे ना परया, जे कार्ज रहे उल्ला, सोए काम ना करया, ऐसो जग हुए गुरे दिखायो, तो एक कीर्त गाया, मान तान असयान सर नानक आया, आसा महला पंजवा बापार गोविंद नाए, साध संत मनाए प्रे पाए गुण गाए, पंच नाद तूर बजाए रखाओ, कृपा पाए सह जाए दरसाए, अबरत्या गोविंद सिउ संत सेव प्रीत, नाथ रंग लालन लाए, गुर ज्ञान मन दृढ़ाए, रहसाए नहीं आए सह जाए, मन धान पाए सब तजी मन की काम करा, चेर चेर चेर चेर पया मन बोध प्यास लागी, हर दर्शनों दिखावो मुझे तुम बतावो, नानक दीन शरण आए गल लाए, आसा महला पंजवा को बिखमगा।

अनप्राणः रवयो सर्वथानः लयो जपयानः पायो पेड़ थानः तो चुकी सगल कान लैनो जिस मथानः पय पावक पार प्राणः निरकर तिसे थानः हार रस रसे मानः लाती तिस पुगानः नानक सह सुमायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुणीगा जपिगे सज तुनीगा साधु रसन पनीगा छूटन दिल सुनीगा।

दिन नावे मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तासे खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नाम साच पछाणे अंतर की गात गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम स्या सुखदाता अनदन बाणी नामे राता मेरा प्रलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मनमुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम खाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास किल दुख काटे हर नाम प्रगास कर विचार आचार पराता सदगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैगल सागत देवाना बन खंड माया मोहे हैराना एक तुत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लहे कर आपे बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो होमे कौरा रहाओ यो मन मुगध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बगसे सदगुर मिले काल कंटक मारे सज पेले यो मन कर्मा यो मन तर्मा यो मन पंच तद ते जन्मा सागत लोभी ओ मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख तेरे पमन सोजी होई यो मन जोगी भोगी तब तप गुरमुख तीने हर प्रवे आपे मन बैरागी होमे त्यागी कड़ कड़ मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दार कर मैलनी हर पत राखे यो मन राजा सूर संग्राम यो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए होमे ग्रास एक दिथाय किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख यो मन भगती जागे अनघ सुन मान्या शब्द विचारी आत्मा चीन पय निरंकारी यो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अहे निस हर जस गुर प्रसाद कड़ कड़ सो प्रभ आ जुगात राम रसायन यो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा महला पहला तन बिन से तनका को कहिए बिन गुर राम नाम कत लईए राम नाम तन संग सगाई आयरस निर्मल हर लिवलाई राम नाम इन कमन हमारा सुख दुसम कर नाम न छोड़ो आपे बगस मिलामन हारा अरहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम सारा जिस तू बगसे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुन गाए हर गुरदाता राम गोपाला

नीत नीत कर बंधिए दे रहना होई, पिंड पवे जीव चरसी जे जाने कोई, ओही ओही क्या करो है होसी सोई, तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई, धंधा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो, ओ ना सुनी कथी तुम लोक सुनावो, जिते सुता नानका जागा ए सोई, जे कर बूझे अपना ता नींद ना होई, जे चलदा ले चल्या केश संपे नाले, ता तन संचो देख के बूझो बिचारे, वंज करो मसूद लहो

तनी साचा मुख नाम रखाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे रिद सिद्ध, मैं एक नाम ना विसरे साचे गुर बुद्ध।

ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न जीने तामसी काहे पए उदासा एक बिंद जिदन कर राख दे से जती कहावे बिन गुर शब्द ना छूटगी प्रमे आवे जावे एक गिरगी सेवक सदका गुरमति लागे नाम दान इस नाम गिरड़ हर भगत सो जागे गुर ते दर कर जानिए जो जाए सियाने नानक नाम ना विसरे सचे मन माने आसा महला पहला मनसा मने समायले।

एक गर्भ बन जाएंगे। मन मुखिया सिर मार वाद खपाइए, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाइए। साहिब हृदय बसाए न पछोताव ही, गुण गा बख्सनहार शब्द कुमाव ही। नानक मंगे सच गुरमुख खालिए, मैं तुझ बिन अवर न कोए नदर निहालिए। आसा महला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरियावला। सच टिके कर आए शब्द उतावला, जय देखा तैसोए अवर न जानिए। गुर की कार कुमाए मैल पछाणिए, रहाओ आ मिलावे सच ता मन पावई। चले सदार जाए अंक समावई, सच्चा साहिब मन वसे वस्या मन सोई। आपे दे वड़े आईया दे तोट न होई,

ता आखण आखी है ताके अंत न जाना मैन तरिया तर एक तू मैं तान सताना नानक की अरदास है सच नाम सुहेला आप गया सोजी पई गुरसबदी मेला हरहाओ होमे गर्भ गवाई है पाई गए विचार साहिब सिओ मन मानिया दे साच आधार अहिंस नाम संतोखिया सेवा सच साई ताको बिघन ना लग गई चल हुकम रजाई जो चले सो पवे खजाने खोटे ठवर ना पाए नी रले झूठाने नित नित खरा संभालिए सच सौदा पाइये खोटे नजर ना आवनी ले अग्न जलाइए जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिनी चाखिया सच रह अगाई किन्ना परमना पेद है हार रसन रसाई तुम संजोगी आया चल सदा रजाई अवगुण आरे कौ गुण नानक सच मिले वडाई आसा महला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया लोकां दा क्या जाए जा तो फाणिया जब लग जियो प्राण सच त्याई है लाह हर गुण गाए मिले सो पाई है अरहाओ सच्ची तेरी कार दे दयाल तू हो जीवा तुसा लागे मैं टेक आधार तू दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही भगत तेरी हैरान दर्द गवावगी दरगे नाम हदूर गुरमुख जान सी वेला सद परवान शब्द पछाण सी सत संतो कर पाओ उस हर नाम से मनो छोड़ विकार सच्चा सच दे।

नरात नाम अमोल है, तू उत्तम हो नीत सेवक कांडिया, नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया, आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे, तो मेला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई, बिन नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई, सदगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई, हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा, राम नाम तन रास दे बिनसे प्रमकूरा, संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाये, आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए, नडुए सांग बनाया बाजी संसारा, खेन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा, होमे चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा, सब जग हारे सो जने गुर शब्द विचारा, जो अंधले हथ टोणी हर नाम हमारे, राम नाम हर टेक है निद दौत सवारे, ज्यो तू राखे त्यो रहा हर नाम आधारा, अंत सखाई पाया जन्म मुक्त द्वारा, जन्म मरण दुख मेटे जप नाम मुरारे, नानक नाम ना विसरे पूरा गुर तारे, आसा महला तीजा अष्टपदिया कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

दास तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आणी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक मना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना हृदय नाम समाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन मसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिन ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोए न जानी माया मोहे दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तब सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिरपावन सोजी होए आप शान कर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उरतारे साची शोभा साग दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

वो कर्म कमावे दुख सबाय, सतगुर सेव सदास पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अनदन भोगे हो में मार, तेज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जा पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जा पढ़िए हो में मार, हर जपिए

अष्टपदियां तार अठवां काफी गुरते सांग उपजे जिन तिसना अगन बुझाई गुरते नाम पाइये वड्डी वड्याई एको नाम चेत मेरे पाई जगत जलंदा देख के

बिन नावे सब नीच जात है, दिष्टा का कीड़ा होए, हा हो कर दी सब फिरे, बिन सबदे हो ना जाए, नानक नाम रते तिन हो मैं गई, सच्चे रहे सुम

पय बिन लाग न लग गई, नामन निर्मल होए, बिन पय कर्म कमावने ठूठे ठाओ न कोए। जिसनु आपे रंगे सो रबसी, सत्संगत मेलाए, पूरे गुरते सत्संगत उपजे, है जे सत सुपाए, बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पल ढोर, जिन की तेत से ना जाननी बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाचे अवगुण विकणे, गुर कै

जीवन दर्द दिखाए, जो जी तोते बिछरे प्यारे, जन्म मरे बिख खाए, जिस तू मिले सो मिले प्यारे, तिसके लागो पाए, जो सुख दर्श

सो करी प्यारे, आवर किश करण न जाए। दिन रैन सब सुहावने प्यारे, जे चपिए हर नाओ। साई कार कमावनी प्यारे, और मस्तक लेख लिखाए। एको आप वर्तदा प्यारे, घड़ घड़ रहा समाए। संसार कूब ते उधर ले प्यारे, नानक हर सरनाए। राग आसा महला पहला, पट्टी लिखी एक ओंकार। सतगुर प्रसाद ससे सोए सिट जिन साजी, सबना साहेब एक पया। सेव तरे चित जिनका लागा, आया तिनका सबल पया। मन काहे पूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तौ पड़िया रहाओ। ईवड़ी आद पुरख ए दाता, आपे सच्चा सोई। इना अखरा में जो गुरमुख बूझे, तेस सिर लेख न होई। ऊड़े उमा ताकी कीजे, जाका अंत न पाया। सेवा करे सही फल पावे, जिन्नी सच कमाया। गंगे ज्ञान बूझे जे कोई, पढ़िया पंडित सोई। सर्व जिया में एको जाने, ताहो में कहे न कोई। कक्का केस पुंडर जब हुए, विन साबूने उजलिया। जमराजे के हेरू आए, माया के संगल बंद लया। खखे खुंद कार सा आलम, कार खरीद जिन खर्च दिया। बंधन जाके सब जग बंधया, अवरी का नहीं हुकुम पया। गगे गोए गाय जिन छोड़ी, गली गोबिंद गर्भ पया। ताड़ पांडे जिन आवी साजी, प्याड़ नवागे तई किया। कगे काल सेक जे ताले, शब्द गुरु के लाग रहे। बुरा पला जे सम कर जाने, इन बिद साहेब रमत रहे। चचे चार वेद जिन साजे, चारे खानी चार जुगा। जुग जुग जोगी खानी पोगी, पढ़िया पंडित आप थिया। छे छे छाया

जजे जान मंगत जन जाच लग चौरासी तीह पवया एको लेवे एको देवे अवर ना दूजा मैं सुनया झजे चूर मरो क्या प्राणी जो कुछ देना सो दे रहया दे दे वेखे हुकम चलाए ज्यो जिया घर जक पया न्यन्ये नदर करे जा देख दूजा कोई नाही एको रब रहया सब थाई एक वसया मन माही तट टंच करो क्या प्राणी तड़ी के मौत के उड़ चलना जुए जमन हारो अपना पाज पड़ो तुम घर सरना ठठे ठाण वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा सही जा निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डडे डंप करो क्या प्राणी जो किश हुआ सो सब चलना किसे सिरे वो तासु पाव सर्ब निरंतर रब रहे टड्डे टाए उसारे आपे यूं तुझ पावे तिवे करे कर कर वेखे उगम चलाए तिस निस्तारे।

तन मन तेरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे। बुद्ध पाठ ना पाईए बहुत चतराईए पाए मिले मन पाने नानक ठाकुर उम्मीद हमारे हम नाही लोकां।

ता मन बैरागी सुन मंडल कर पाया। आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लखाया। आसन बैसन फिर नारायण तित मन राता विचारे। नानक नाम रते बैरागी अनहद रोण चुनकारे। तित अगम पुरे ओ कित बिद जाइए राम। सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम। सच शब्द कमाइए निज कर जाइए पाइए गुणी निधाना। तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना प्रधाना। जब तब कर कर संजम थाकी हट निग्रह नहीं पाइए। नानक सहज मिले जग जीवन सदगुर बूझ बुझाइए। गुर सागरो रतनागर तित रतन कणे रे राम। कर मजनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम। निर्मल जल नहाए जा प्रपाए पंच मिले विचारे। काम क्रोध कपट बिखिया ताज सच नाम उर थारे। होमे लोभ लहर लभता के पाए दीन दयाला। नानक गुरसमान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला। ओ बन बनो देख रही किरण देख सुभाया राम। तिर पवन तुझे किया सब जगत सुभाया राम। तेरा सब किया तू थिर थिया तो सुमान को नाही। तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन के सालाही। अण मंगया दान दीजे दाते तेरी भगत परे पंडारा। राम नाम मुक्त ना कोई नानक कह विचारा। आसा महला पहला मेरा मनो मेरा मन रता। राम प्यारे राम सच साहेब आद पुरख अपरंपरो तारे। राम अगम अगोच अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो। आज उगा दी है पी होसी अवर चूठा सा मानो। कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाई है। नानक गुरमुख शब्द पछाणे महर्ष नाम ते आई है। मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सिखाई राम। हो मैं ममता माया संग न जाई राम। माता पित भाई सुच तराई संग न संपे नारे। सायर की पुत्री पर घर त्यागी चरण तले विचारे। आद पुरख चलत दिखाया जय देखा तै सोई। नानक हर की

दियो, नाम लैन से सोह है, तिन सुख फल होवे, मन से जिन जाए जियो, तिन फल तोट न आवे, जांत पावे, जे जुग केते जाए जियो, जे जुग केते जाए स्वामी, तिन फल तोट न आवे, तिन जरा न मरना, नरक न परना, जो हर नाम ते आवे, हर हर करे से सूके नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो, नाम लैन से सोह है, तिन सुख फल होवे, मन से जिन जाए जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला पहला, शांत कर तीजा, तू सुन हरना कालिया, ई वाड़गेरा ताराम, बिखबल मीठा चार दिन, फिर होवे ताता राम, फिर होए ताता खरा माता, ना बिन परतापे, ओ जेव सायर दे लहरी, बिजली जिवें चमके, हर बाज राखा कोए नाही, सोए तुझे बिसारिया, सदकहे नानक चेतरे मन, मरे हर ना कालिया, पावरा फूल पहंतिया, दुख अदपारी राम, मैं गुर पूछा अपना, साचा बिचारी राम, विचार सगुर मुझे पूछया, पवल बेली रातो, सूरज चढ़या पिंड पड़या, तेल तामन तातो, जाओ मग बादा खाए चोटा, शब्द बिन बेता लिया, सच कहे नानक चेतरे मन, मरे पवरा कालिया, मेरे जीड़या परदेसिया, इत पवे जिंजा ले राम, साचा साय मन मस, की फासे जमजा ले राम, मछली विशुन्नी नैन रुन्नी, जाल बद्धक पाया, संसार माया मोह मीठा, अंत परम चुकाया, पगत कार चित लाए हरस्यों, छोड़ मनो अंदेसया, सद कहे नानक चेतरे मन, जीड़या परदेसिया, नदियां माव शून्या, मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विस परे, को जाने जोगी राम, कोई सहज जाने हर पछाणे, सदगुरु जिन चेतया, बिन नाम हर के परम पूले, पचे मुद अचेतया, हर ना भगत ना हृदय साचा, से अंत ताही रुन्या, सद कहे नानक शब्द साचे, मेल चिरीम शून्या, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला तीजा, शंत कर पहला, हम करे साचा सोहला, साचे शब्द सुहाया राम, तान पिर मेल पया, प्रभ आप मिलाया राम, प्रभ आप मिलाया, सच मन वसाया, कामन सहजे माती, गुर शब्द सी

भगत पाव यो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सोहर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोयला तेन ससदा जो हर गुण गावे। हर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सो सब किसे जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुकम पछाणे। जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी अन दिन हर लिव लावे। जय जय मन तू तामदा तय तय हर तेरे नाले। मन सियाण पछोड़ी है गुर का शब्द संभाले। साध तेरे सो सो सदा है एक खिन हर नाम संभाल हे। जन्म जन्म के तेरे पाप कटे अंत परम पद पावे। साची नाल तेरा गंढ लागे गुरमुख सदा संभाले। इउं कहे नानक जय मन तू तामदा तय हर तेरे सदा नाले। सतगुर मिले तावत थम्या निकर बसिया आए। नाम हिया जे नाम लय नाम रहे सुमाए। तावत थम्या सतगुर मिले दसवां द्वार पाया। तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे। जित शब्द जगत थम रखाया ते अनेक वाजे। सदा अंध है सच्चे रहा सुमाए। इउं कहे नानक सतगुर मिले धारत थम्या नेकर वसिया आए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंग मान। मूल पछाणे ता सो जाण है मरण जीवन की सोझी होई। गुर प्रसादी एको जाण है ता दूजा पाओ ना होई। मन सांत आई वजी वधाई ता होआ परवान। इउं कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लदया जाहे। माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाहे। गारब लागा जाए मुगध मन अंत गया पछतावे। अहंकार सना रोग लगा बिरथा जन्म गवावे। मनमुख मुग्ध चेते नाही अगे गया पछतावे। इउं कहे नानक मन तू गारब अटिया गारब लदया जावे। मन तू मत मान करे ते हौ खज जानदा गुरमुख निमाणा हो। अंतर अज्ञान हौ बुद्ध है सच शब्द मलख हो। हो निमाणा सतगुरु अगे मत किश आप लखावे। अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। सतगुर के पाणे करे कार सतगुर के पाणे लग रहो। इउं कहे नानक आप छड सुख पावे मन निमाणा होए रहो। तन सो वेला जित में सतगुर मिलिया सो सो चित आया। मां आनंद सहज पया मन तन सुख पाया। सो सो चित आया मन वसाया अवगुण सब विसारे। जांच पाणा गुण प्रगट होए सतगुर आप सवारे। से जन प्रवान होए जिन्नी एक नाम दिड़या दुतिया पाओ चुकाया। इउं कहे नानक तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सो चित आया। एक जंत परम फुले तिन सै आप फुलाए। दूजे पाए फिरे होमे कर्म कुमाए। तिन सै आप फुलाए कुमार्ग पाए तिनका किश ना वसाई। तिन की गत अवगत तू है जाने जिन ए रचन रचाई। हुगम तेरा खरा पारा गुरमुख किसे बुझाए। इउं कहे नानक क्या जंत विचारे जा तुद परम फुलाए। सच्चे मेरे साहेबा सच्ची तेरी वड्याई। तू पार ब्रह्म बेअंत स्वामी तेरी कुदरत कहण ना जाई।
ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਕੋ ਤੁਧ ਮਨ ਵਸਾਈ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ।

हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो हर घर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो हर प्रीत लगाई हर नाम सखाई प्रभु चूका आमन जान जियो।

न अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे, हर करता सब कछु जानद, सिर रोग हथ दीजे, जिना नानक गुरमुख हिरदा सुध है, हर भगत हर लीजे। आसा महला चौथा, जिन अंतर हर घर प्रीत है, तेजन सुगड़ सियाने राम राजे, जे बारों पोल चुक बोल दे, पी खरे हर पाने, हर संतानु होर थाओ नाही, हर मान निमाने, जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने, जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुर सिखी सो थान पालिया, ले तूर मुख लावा, गुर सिखां की काल थाए पई, जिन हर नाम ते आवा, जिन नानक सतगुर पूजिया, तिन हर पूज करावा, गुर सिखां मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, कर सेवे पूरा सतगुरु, भुख जाए लह मेरी, गुर सिखां की भुख सब गई, तिन पिछे होर खाए कनेरी, जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट न आवे हर पुन केरी, गुर सिखां मन वाधाइयां, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुर सिखां मन मिट्टा, हर दरगे गुर सिख पैनाई है, जिन्ना मेरा सतगुरु तुठा, जन नानक हर घर होया, हर घर मन उठा। आसा महला चौथा, जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे, तिसकी तिसना पुख सब उतर, जो हर नाम ते आवे, जो हर घर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ न आवे, जन नानक कौ हर कृपा कर, निध जपे हर नाम तरावे, जिन्नी गुरमुख नाम ते आया, तिना फिर बिघन न होई राम राजे, जिन्नी सतगुर पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई, जिन्नी सतगुर प्यारा सेवया, तिना सुख सद होई, जिना नानक सतगुर पेटिया, तिना मिलिया हर सोई, जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे, तिन की निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर से ती मन मानिया, सब दुष्ट चक मारा, जन नानक नाम ते आया, हर रखण हारा, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे,